0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक निरंतर जारी है। आज शक संवत 1948 के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तदनुसार 30 अगस्त 2026, आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे सलाह दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी तुम्हारे साथ सख्ती की जाए। इतना कहकर चोर मर गया और उसका लड़का उसकी सलाह को मानकर रोजाना रात को चोरियां करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े और घर वाले जाग गए। चोर वहां से किसी तरह से बचकर निकल गया और रास्ते में उसे एक धर्मशाला मिली, जहां पर सत्संग चल रहा था। चोर को अपने पिता की बात याद आई कि किसी धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन उस समय छिपने का कहीं अवसर न था, इसलिए चलते हुए सत्संग के कारण उसने अपने कानों को ढक लिया ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाएं। लेकिन मन तो अड़ियल होता है, इसे जिधर से मोड़ो यह उधर नहीं जाता। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। इधर पीछे चोर के घर वाले और पहरेदार लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने के बाद आखिरकार वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके पिता की उसे दूसरी सीख याद आई कि अगर वह पकड़ा भी जाए तो अपना अपराध स्वीकार न करे। चोर को राजा के सामने पेश किया गया, वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप धरकर दो नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चार मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की, और उसने चोर के सामने आकर कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत स्वतंत्र करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था, अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर उसकी जान में जान आई और वह सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ी और उसे तुरंत वह सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है और वह समझ गया कि ये देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। इस तरह पिता की सीख और सत्संग से वह चोर बच गया।
1: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरदार हुकुम सिंह के जीवन पर आधारित होगा। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मनीषा चतुर्वेदी और उनका साथ देंगे उनके साथी बाल कलाकार। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम का विषय होगा AI। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच से रत्नेश सोनी की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौड़। सुबह 10:00 कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 10:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर के जीवन पर आधारित होगा और सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और सुबह 11:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 11वां भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के आठवें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री और अनुष्टुप।
1: वाजयन्निव नु रथान्योगाम अग्ने रूप स्तुहि यशस्तमस्य मीडहुषः। हे मनुष्य, जिस प्रकार धन धान्य की कामना वाले रथों को उत्तम रीति से तैयार करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत यशस्वी, सबके लिए सुखकारी अग्निदेव की स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन करो। यह सुनीथो ददा सुषेयुर् यो जरयन्नरिम चारु प्रतीक आहुतः। जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पथ पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे शत्रुनाशक दानशील अग्निदेव का हम आवाहन करते हैं। य उश्रिया दमेश्वा दोषो ससी प्रशस्यते यस्य व्रतम न मीयते। जो अग्निदेव घरों में अपनी कांति से युक्त होकर प्रतिष्ठित होते हैं, जो अग्निदेव दिन और रात प्रशंसा के योग्य हैं, तथा जिनका व्रत कभी खंडित नहीं होता, वे अग्निदेव पूज्य तथा प्रशंसनीय हैं। आ यह स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा अंजानो अजरैरभि। जिस तरह सूर्य से द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे अविनाशी आश्चर्यकारक अग्निदेव अपनी ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमुक्थानि वावृधुः विश्वा अधिश्रियो दधे। शत्रुनाशक तथा सुशोभित अग्निदेव स्तुतियों से अत्यंत तेजोमय होकर समस्त ऐश्वर्यों को धारण करके शोभायमान होते हैं। अग्नेरिंद्रस्य सोमस्य देवाना मूतिभिर्वयम् अरिष्यन्तः सचे मह्यभि श्याम प्रतन्यतः। अग्नि, इंद्र, सोम आदि अन्यान्य देवताओं के संरक्षण में हम भली भांति सुरक्षित हैं, अतः कभी भी नाश को न प्राप्त होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के आठवें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। और क्या आपको पता है, बहुत तेरी बातें छोटी छोटी ही होती हैं। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम दिन भर चिंता करते हैं और तनाव में रहते हैं, वे अधिक समय तक मायने भी नहीं रखती। इसीलिए अपूर्णता को स्वीकार कर ले। ये परफेक्शनिस्ट होने से अच्छा है।

इस सोच को छोड़ दें कि सौम्य और शांत लोग सुपर अचीवर नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं, आप कूल रहकर भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव को समझें, क्योंकि एक नकारात्मक विचार आसानी से और भी कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है।

दूसरे लोगों और उनकी समस्याओं के लिए समझ विकसित करने से आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद करने में मदद मिलती है। यह आपको अधिक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण देता है। अपने आप को यह याद दिलाएं कि जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा हासिल करके जाएंगे जो मूल्यवान है।

जब भी आप परेशान हो तो खुद से ये पूछे कि क्या ये एक साल बाद भी मायने रखेगा। ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं, इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता ना करें। खुद से ये सवाल पूछने से आपको ज्यादा शांत जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन निष्पक्ष नहीं है और उसके साथ जीने की कोशिश करें।

अपनी चिंता और टेंशन को कम करने के लिए दूसरों को सही होने दे, उन्हें ये विश्वास करने दे कि वे ठीक कर रहे हैं। किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं है कि वो गलत हैं। ज्यादा धैर्यवान बने, धीरज का अभ्यास करें, दूसरों में मासूमियत खोजने की कोशिश करें और देखें कि वे जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

वर्तमान में जीना सीखें। अपने मस्तिष्क को इस पर ना भटकने दें कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। बस इसे बार बार वर्तमान में लौटा लाएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास वास्तव में है।

करने के लिए हमेशा कुछ होता है। इसीलिए जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो, तब भी अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। और जब आप अपने सभी टास्क पूरे कर लें, तो खुश होने का इंतजार ना करें। किसी भी बात पर प्रसन्न हो जाएं, किसी भी बात पर मुस्कुरा दें और अपनी पीठ थपथपा लें।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज़ मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरदार हुकुम सिंह के जीवन पर आधारित है।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। किसी भी देश की दशा और दिशा उसके रहने वालों के आचरण पर निर्भर करती है। राष्ट्र के निर्माण में उसके कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सजग और समर्पित निवासियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो जहां और जिस दायित्व के साथ है, वो वहीं अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और ईमानदार हो, तो राष्ट्रहित में ये उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे अनगिनत राष्ट्र सेवियों ने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। आज वतन का राग कार्यक्रम में चर्चा एक ऐसे ही निष्ठावान राजनीतिज्ञ और महान देशभक्त सरदार हुकम सिंह की। सरदार हुकम सिंह का जन्म 30 अगस्त सन 1895 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्याम सिंह था, जो एक व्यापारी थे। सरदार हुकम सिंह ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉन्टगोमरी से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और खालसा कॉलेज अमृतसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज लाहौर से कानून की पढ़ाई की और मॉन्टगोमरी में वकालत आरंभ की। कई सालों तक वो मॉन्टगोमरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। आगे चलकर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की। सरदार हुकम सिंह के सामाजिक सरोकार बहुत गहरे थे। 1920 के दशक में सिख गुरुद्वारों पर ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तत्कालीन सर्वोच्च गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1923 में अधिकांश सिख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में सरदार हुकम सिंह ने भी जेल यात्रा की। उन्हें लगभग 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में जब देशव्यापी प्रदर्शन हुए, तब सरदार हुकम सिंह भी मॉन्टगोमरी की सड़कों पर उतर आए। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरदार हुकम सिंह घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनकी सक्रियता लगातार बनी रही।

जब देश का बंटवारा हुआ तब सरदार हुकम सिंह भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रतिभा का प्रकाश ऐसा था कि वो छुपकर नहीं रह सकते थे। बहुत जल्द वो कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इस पद पर वो नवंबर 1948 तक रहे। सन 1920 में जब शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई थी तभी से सरदार हुकम सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। वो 3 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। 3 साल तक वो मॉन्टगोमरी सिंह सभा के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। जब देश का विभाजन हुआ तब संविधान सभा की कुछ सीटें खाली हो गईं। 30 अप्रैल 1948 को सरदार हुकम सिंह संविधान सभा के सदस्य बने तथा संविधान सभा के कार्यों में पूरी तन्मयता से जुटे रहे। सरदार हुकम सिंह अंतरिम संसद के सदस्य भी थे और बाद में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली सटीक थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रशंसनीय। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने उन्हें सभापति तालिका में रखा था। जब कभी उन्हें सभा चलाने का अवसर मिला उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यवाही का संचालन किया। सभी लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनकी निष्पक्षता और सभा संचालन की कुशलता ऐसी थी कि वो सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। यही कारण है कि सन 1962 में वो सर्वसम्मति से तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी थी। उनका प्रयास रहता कि सदन में सभी का आचरण गरिमापूर्ण हो और संविधान में प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उचित उपयोग हो। संसद में अनुशासन और मर्यादा के लिए उन्होंने नवाचार किए। उनके विचार प्रगतिशील थे, इसीलिए वो सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीकों और प्रक्रियाओं की खोज में लगातार जुटे रहते। उन्होंने जो भी काम किया उसे पूजा की तरह किया, आराधना की तरह किया।

सरदार हुकम सिंह चाहते थे कि कार्यपालिका पर विधानमंडल का श्रेष्ठ दिशा सूचक प्रभाव हमेशा बना रहे। उनकी कार्यशैली इसी उद्देश्य के परिचालन की थी। कानून की उनकी पृष्ठभूमि और न्यायाधीश के रूप में उनका कार्य करना लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सरदार हुकम सिंह विनम्र और मृदुभाषी होने के साथ ही अपने निश्चय के पक्के और एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हुए वाद विवाद के समय सभा की अध्यक्षता की। भारत चीन युद्ध के बाद पारित किए गए अनेक प्रमुख विधानों में से एक था भारत सुरक्षा अधिनियम। ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के समय जिस प्रभावशाली तरीके से उन्होंने सभा की कार्यवाही का संचालन किया, उससे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी गरिमा और अधिक बढ़ गई। 28 अप्रैल सन 1965 को 17वें संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित रही। सरदार हुकम सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नाइजीरिया, मलेशिया, सोवियत संघ, मंगोलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फिलीपींस जैसे देशों में गए संसदीय शिष्टमंडल दल का प्रतिनिधित्व भी किया था। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। 15 अप्रैल सन 1967 को उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जून 1972 तक उन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई। एक राज्यपाल के रूप में इस पद की उच्च परंपरा को उन्होंने सदा बनाए रखा, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। सरदार हुकम सिंह के व्यक्तित्व के कई आयाम थे। कानून और राजनीति उनका कर्म क्षेत्र रहा, लेकिन इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में उनकी रुचि थी। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक जाने माने खिलाड़ी थे। सन 1914 से 16 के दौरान वो पंजाब विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के सदस्य रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही किसी देश के चहुमुखी विकास का आधार होती है। प्रतिभाशाली छात्रों में वो भारत का भविष्य देखा करते थे। यही कारण है कि कुछ समय वो खालसा हाई स्कूल मॉन्टगोमरी के प्रबंधक रहे और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी में कुछ पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं सिख केस, द प्रॉब्लम ऑफ सिक्स, रशिया टुडे, रशिया एज आई सॉ इट आदि। देश हित में वो लगातार सक्रिय रहे। बाद के वर्षों में भी उन्होंने सिख समाज की बेहतरी के लिए अनेक कार्य किए। देश और समाज की सेवा करते हुए ही 27 मई सन 1983 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरदार हुकुम सिंह के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथ बाल कलाकार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेंगे, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
3: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: आप बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
3: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
3: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
3: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं। जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
3: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
3: जी,
1: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
3: जी,
1: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
3: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
3: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जबी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
3: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
3: जी,
1: यही कहा था आपसे,
3: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
3: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
3: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा, तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है, ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
3: जी ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
3: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
3: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
3: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
3: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
3: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
4: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यू था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि ये और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
1: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
4: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
1: जी।
4: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीजें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
1: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना एलेक्स? आप भी तो, आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
3: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी। और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
1: में तब्दील हो गई,
3: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे। क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदि होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीजों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि खत्म दोनों तरफ ही होना था हमें। क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो, मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज, मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
1: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
3: जी,
1: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
3: जी,
1: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से, और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
3: जी,
1: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
3: जी, बिल्कुल
1: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
3: जी,
1: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे हो, उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
4: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था, जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है, इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
1: कोई तो सुने, पहली बात
4: कोई तो
1: बात
4: सुने। बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत, जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन हैं ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं अब इसका असर उन पर
1: उन पे ना जाए।
4: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
1: मेरा तो, पैसा मैं
4: मेरा,
1: कुछ भी करूं।
4: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 10th या 9th में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे। इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तो इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा। और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
1: हद में रहो,
4: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं, क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। पापा मान ही नहीं रहे थे, वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात
1: नहीं करूँगी,
4: मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
1: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बाल सभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सके, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे, और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
3: जी बिल्कुल
1: आ सकता है।
3: जी जी।
1: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय था नशे का साथ जिंदगी का नाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी और साथी बाल कलाकारों ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज हम AI विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच, और इनसे बातचीत करेंगे रत्नेश सोनी।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
6: ये मेरा इंडिया।
5: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
7: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
7: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
8: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पर मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को क्योंकि मैं बाहर ही था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में एआई इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनेट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़। 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। एआई की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए, 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने एआई के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी पीएचडी जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
7: तो एआई क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
8: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। एआई वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, 2 कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट में मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन एआई जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो एआई कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है, एक शहर का लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम, मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैक एंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। चैट जीपीटी आपने बोला, अब चैट जीपीटी आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपी राइट दे दे, तो ये बैक एंड में ही संचालित हो रहा है, वही एआई है।
7: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक बात। दूसरी चीज, उतना समय भी नहीं लग रहा।
8: बिल्कुल।
7: तो क्या माने एआई आने से लोगों के काम छिन गए?
8: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना है, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
7: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
8: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी। तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
7: अनुग्रह जी, एक बात और, कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
8: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है, जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही, जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता।

0: बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स है, आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय है जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
0: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
0: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बाल लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
0: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
0: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई हैव अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे एक पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
0: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।

0: वो सही था, चैट जीपीटी से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज एआई पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर एआई है क्या, एआई कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की एआई पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय था एआई। जानकारी दे रहे थे विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नगाइच और इनसे बातचीत कर रहे थे रत्नेश सोनी। 90.8 MHz पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है हमारी सेना हमारा गर्व। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौड़।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है आज इसका पहला भाग।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमीशनिंग वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
2: आज कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। आपका भारतीय थलसेना के साथ काफ़ी लंबा तारुफ रहा है। हम आपसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं को महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप एक सैनिक हैं और देश की सुरक्षा के जो इतने भी ऑपरेशंस हुए हैं, आपने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। तो मेरा प्रश्न जो है वो आर्मी ऑफिसर से है कि अगर मैं मोटे तौर पर पूछूं तो एक आर्मी ऑफिसर हमारे श्रोताओं को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में किस तरह से परिचित करवाना चाहेंगे?
3: जय हिंद श्रोताओं। भारतीय सशस्त्र सेना यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस 14 लाख के एक्टिव पर्सनल्स के साथ इस विश्व की एक सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। ये जो फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कार्यरत रहती है। हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो भारतीय सशस्त्र सेना के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है कि अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना, अपने देश को भारी हमले से, किसी भी तरह के फॉरेन हमले से बचाना, एंड तीसरा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनल सिक्योरिटी में और किसी भी तरह के आपदा में मदद प्रदान करना, और जो विश्व में यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें योगदान देना। इसमें एक्टिव जो है तकरीबन 14 लाख पर्सनल होते हैं और रिजर्विस्ट जो हैं वो 11.5 लाख की नफरी के साथ है, जिसमें कि भारतीय सेना के 12 लाख की नफरी है, हमारी इंडियन नेवी की जो है तकरीबन 70,000 की नफरी है, इवन इंडियन एयरफोर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 लाख के करीब है।
2: कर्नल साहब, आपने अपने उत्तर की शुरुआत में एक शब्द का यूज़ किया था कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वह विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। तो वॉलंटियर फोर्स, इससे आपका क्या तात्पर्य था?
3: काफ़ी सारे देशों में नियम होता है कि जो युवा होते हैं उनको कंपल्सरली अपने देश की सेनाओं में सर्विस प्रदान करनी पड़ती है, उसको कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। मैं अगर उदाहरण के तौर पर बोलूँ तो यूएसए में होता है इसराइल में है, साउथ कोरिया में है और ऐसी काफी कंट्रीज हैं जिसमें कि नॉर्वे है जहाँ पे कि ये रूल है, पर भारत में इस तरह का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छता से जो है अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में तो युवा इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए कि कभी भी हमारे यहाँ पे कंपलसरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है।
2: आपने बताया था कि 14 लाख एक्टिव फोर्स है, और उसके अलावा ऐसे भी क्या लोग होते हैं जो एक्टिव ना होकर जिनको बाद में बुलाया जा सकता है?
3: एक रिजर्विस्ट जो मैंने बताया था आपको, जो भी व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में
2: जी
3: सर्विस करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के लिए रिजर्विस्ट लिस्ट में रहते हैं
2: जी।
3: इसका तात्पर्य ये रहता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है
2: जी।
3: तो हमारे देश में एक ट्रेंड मैन पावर हमेशा अवेलेबल रहती है जिसको कि तुरंत जो है हम एक्टिव सर्विस पे वापस बुला सकते हैं। तो ये 5 साल के लिए हर व्यक्ति जो एक सोल्जर होता है
2: जी।
3: वो रिजर्विस्ट लिस्ट पे रहता है।
2: यानी अगर इमरजेंसी है और आवश्यकता आन पड़ी है तो सेवानिवृत्ति के 5 सालों के भीतर रिजर्विस्ट फोर्स में से लोगों को बुलाया जा सकता है सेवाएं प्रदान करने के लिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने अदिति।
2: और कर्नल साहब, आपने बताया था अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें मैन पावर के लिहाज से, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं का मिला के जो आंकड़ा बनता है वो 14 लाख के आसपास का बनता है। अगर हम भारत को देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या जनसंख्या के लिहाज से, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का अगर प्रश्न उठता है तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत विविधता लिए है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 14 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया मैन पावर को लेकर?
3: अदिति, आधा आंसर तो आपने खुद ही दे दिया है। जैसे कि आपने खुद ही बोला कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
2: जी,
3: विद ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया
2: जी।
3: तो अगर हम देखें और अगर हम बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो रण ऑफ कॉस्ट से शुरू करके ईस्ट तक हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का है। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो तकरीबन 7,500 किलोमीटर की हमारी जो है कोस्टल लाइन है। भारत जो है वो एक बहुत ही विशाल देश है। इसके अलावा अगर आप को वदित हो, हमारा देश का एरिया है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इवन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में 2 मेजर आइलैंड के ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 572 आइलैंड्स के ग्रुप हैं, एंड इसी तरह से अगर हम अरेबियन सी में देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि 36 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। तो इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए ये मैन पावर की हमें आवश्यकता होती है,
2: और इस मैन पावर का डिप्लॉयमेंट जो है थल के साथ साथ पानी में भी, आइलैंड्स पर भी, हिमालय में भी, कहीं पर भी होता है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप लोग भारत के कोने कोने पर अपनी मौजूदगी से हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। भारत इतना बड़ा देश है और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं छूती हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर हम समाज में भी रहते हैं तो हर पड़ोसी ना हमारा मित्र होता है ना दुश्मन होता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमेशा हमारे संबंध कभी मीठे नहीं रहे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा हम अपने पड़ोसियों की दृष्टिगत कैसे करते हैं?
3: देखिए, जो हमारा देश है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सबसे पहले लैंड बॉर्डर की बात करूँगा तो 15,000 से ऊपर जो है हमारा लैंड बॉर्डर है, जिसमें कि अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो हमारी सबसे पहले जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि रण ऑफ कच्छ से शुरू होके, सर क्रीक से शुरू होके, उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, राजस्थान के डेजर्ट्स के बाद पंजाब के प्लेन्स हैं से होती हुए जम्मू एंड कश्मीर की हिली टेरेन के आगे जो है कारगिल, और फिर सियाचिन जो कि जिसको कि हम सुपर आल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं, ये पूरा जो है हमारा पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर लगता है, जो कि तकरीबन 3,323 किलोमीटर है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, जो कि सर रेडक्लिफ लाइन कहलाती है, एंड जम्मू के ऊपर हमारा जो एरिया है वो LOC है
2: जी।
3: पाकिस्तान के साथ हमारा एक शिमला समझौता हुआ था 1971 वॉर के बाद, जिसमें कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल जो भी जहाँ पे लोग थे उसके हिसाब से LOC कहलाती है वो। ये LOC जो है सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे NJ 9842 तक डिमार्केटेड है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मतलब एरिया है जो कि पाकिस्तान जिसपे कि अपना हक मानता है, ऑफकोर्स ये भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और सीमा है यानी कि बॉर्डर है, उसको हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह से इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अक्साई चीन वाला जो एरिया है वहाँ से हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, और ये बॉर्डर वहाँ से होता हुआ अक्साई चीन के एरिया के नीचे से जहाँ के अभी आपने काफ़ी नाम सुने होंगे पेंगेंग सो लेक हैं, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए जो है ये आगे नेपाल सिक्किम भूटान से होते हुए आगे अरुणाचल के साथ जाते हैं, और ये एरिया है तकरीबन जो है 4000 किलोमीटर का हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ हमारी जो संबंध है वो जगविदित हैं
2: जी,
3: और ये खासकर जो हमारा उनके से सबसे बड़ा झगड़ा है वो बॉर्डर के साथ तरीके है। अगर हम चाहें तो विस्तार में इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं जी। फिर दूसरी एक जो कंट्री है जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं जो कि नेपाल है, नेपाल के साथ हमारा देश तकरीबन जो है 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरह से अगेन दूसरा एक मित्र देश भूटान है जिसमें कि हम तकरीबन 700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, और ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो म्यांमार है जिसमें कि हमारे साथ तकरीबन 1700 किलोमीटर का बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं, और बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था 71 के बाद जिसके लिबरेशन के बाद उसको वो बांग्लादेश हुआ, इसमें अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये भी रेडक्लिफ लाइन कहलाती है जिससे जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। एक और देश है जिसके साथ हम अपना बॉर्डर साझा करते हैं वो है अफगानिस्तान, ये POK में है, तकरीबन 105 किलोमीटर की सीमा जो है हमारी उनके साथ साझा होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो हमारे लैंड बॉर्डर की बात है। अगर हम अब नीचे देखें यानी साउथ में देखें तो हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसमें जो है हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ये हम जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही विशाल देश है, सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इन सब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना।
2: कई युवा रहते हैं जो आर्मी से जुड़ना चाहते हैं और उनकी स्किल अलग रहती है, एक सैनिक अफसर के अलावा कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
3: आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी सेना है
2: जी,
3: तो इसमें बहुत ही डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे एक सोल्जर जो है लड़ने जाता है तो उसको लड़ने के लिए वहाँ पे खाना भी देना होता है,
2: जाहिर सी
3: उसको
2: बात
3: कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो अगर खाना है देना है तो उसको बनाने के लिए कुक चाहिए होता है, अगर सोल्जर्स को मेंटेन अपने कपड़े मेंटेन करने हैं तो उसको एक दर्जी की भी जरूरत पड़ती है, अगर उसके पास बूट और इक्विपमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आर्मी में गाड़ियां होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है टेक्निकल बंदे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उनको रिपेयर कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। तो एक ये जो फोर्सेस होती हैं इसमें एक जनरल ड्यूटी के अलावा बहुत सारी टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ तक कि इवन होटल मैनेजमेंट के जो पास होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जो किसी भी फील्ड में है वो इसके लिए ट्राई कर सकता है, जो उसकी स्पेशल जो उसने क्वालिफिकेशन हासिल करी है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या वो सिविल इंजीनियर हो तो या वो मेडिकल से हो, हर तरह के जो युवा हैं वो अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं आर्मी में।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आगे भी आते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियाँ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: हमारी सेना हमारा गर्व, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
5: दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
6: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: भारतीय रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रयोगशालाओं में एक गहरा बौद्धिक परिवर्तन आकार ले रहा था। प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री F.G. डोनन के मार्गदर्शन में तीन युवा भारतीय विद्वानों ने एक ऐसा बंधन बनाया जो अंततः उनके स्वदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाला था। इतिहास में रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स के रूप में प्रसिद्ध इस समूह में शांति स्वरूप भटनागर, ज्ञानचंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। उनकी ब्रिटेन की यात्रा भारतीय छात्रों के उस रणनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम में उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्हें डोनन के रूप में एक ऐसा गुरु मिला जिसने उपनिवेशिक परिधि और महानगरीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत सेतु के रूप में कार्य किया। डोनन की प्रयोगशाला एक ऐसी भट्टी साबित हुई जहाँ इन विद्वानों के साथ उपनिवेशिक अधीनस्थों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के समान भागीदारों के रूप में देखा गया। लंदन में इन वर्षों के दौरान बनी इस मित्रता ने आपसी समर्थन का एक आजीवन नेटवर्क तैयार किया जो उपमहाद्वीप में लौटने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1920 के दशक में भारत लौटने पर थ्री मस्केटियर्स ने एक ऐसी शैक्षणिक दुनिया में प्रवेश किया जो तेजी से विस्तार कर रही थी। जेसी बोस और पीसी राय जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की सलाह पर शांति स्वरूप भटनागर को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन विज्ञान के अध्ययन के रूप में नियुक्त किया गया। भटनागर का करियर भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण बन गया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक उन्हें ही नियुक्त किया गया। जेसी घोष ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और बाद में स्वतंत्र भारत के योजना आयोग में सेवा दी। मुखर्जी के साथ मिलकर इन तीनों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जिसने यूरोपीय सिद्धांतकारों के लिए केवल तथ्य संग्रहकर्ता की उपनिवेशिक भूमि को अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता H.B. मेडलिकॉट जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के उन नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधा जवाब थी जिन्होंने कभी दावा किया था कि भारतीय मौलिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इन थ्री मस्केटियर्स ने साबित कर दिया कि भारत का वैज्ञानिक तार मौलिक और प्रभावशाली था। अपने स्वयं के शोध संस्थानों और संघों की स्थापना करके उन्हें भारतीय विज्ञान का ध्यान शुद्ध प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक गुरुओं के रूप में कार्य किया और विज्ञान के आधुनिक मंदिर में शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। अंततः उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक महानगरीय गुरु और उनके भारतीय शिष्यों के बीच का व्यक्तिगत संबंध एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भावना को जन्म दे सकता है जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर और आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति में बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दिया है दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी और धातुओं में छिपी रक्षा की ताकत के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम दादू और रुचि के साथ भारत की समुद्री यात्रा पर थे। कभी मुंबई के मझगांव डॉक में पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण को समझा, तो कभी गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति को नई पहचान दी। आज दादू और रुचि अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल, पनडुब्बियां, इन सब में एक ऐसी चीज समान होती है जिसे हम अपनी आंखों से तो देखते हैं पर इसके महत्व को शायद ही समझते हैं। वो है धातु।
1: लेकिन क्या हर धातु एक जैसी होती है? क्या साधारण इस्पात से लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं? रॉकेट का इंजन हजारों डिग्री तापमान कैसे सह लेता है? और भारत ने ऐसी विशेष धातुएं स्वयं से बनाना कब शुरू की? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज दादू और रुचि हमें लेकर चलेंगे हैदराबाद, जहां स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड अर्थात मिधानी। तो आइए चलते हैं दादू के घर।
2: दादू, आखिरकार हम घर लौटे आए। सच कहूँ ना तो इस बार की यात्रा मेरी सोच से भी ज्यादा रोचक निकली है।
3: हाँ बेटा, लेकिन इस यात्रा ने बूढ़े शरीर को थका दिया है।
2: दादू, थोड़ी सी थकी थकी सी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत कुछ जाना है आपसे। थैंक यू सो मच दादाजी।
3: जी बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने को मिला।
2: दादू, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है।
3: पूछो पूछो बिटिया।
2: दादू, हमने जहाज देखे, पनडुब्बियों के बारे में जाना, लड़ाकू विमानों के बारे में जाना, लेकिन एक बात मैंने हर जगह सुनी, विशेष इस्पात, विशेष धातु, मिश्र धातु। आखिर ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या साधारण लोहे या इस्पात से काम नहीं चल सकता?
3: शांत शांत रुचि बेटा। वाह, तुम्हारा ये प्रश्न बताता है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तुम केवल ये नहीं पूछ रही कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहती हो कि वो कैसे बनता है।
2: तो फिर तो ये सस्पेंस खोल ही दीजिए दादाजी।
3: हाँ हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें रसोई तक चलना होगा।
2: रसोई? मिश्र धातु और रसोई का क्या संबंध है भला?
3: बहुत गहरा संबंध है बेटा। चलो चलो, आज की पढ़ाई प्रयोग करके करेंगे, ठीक है?
2: चलिए।
3: चलो आओ। देखो, रसोई में कप रखे जाने की आवाज सुनो। ठीक है, सुनी कि नहीं सुनी?
2: हाँ हाँ।
3: हाँ, अब गैस पर पानी उबलने की हल्की ध्वनि को सुनो।
2: दादू, अब बताइए बिना, मैं सोच रही थी कि आज हम हैदराबाद की बात करेंगे और आप मुझे रसोई में लेकर आ गए।
3: विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता बिटिया, वो हमारे घरों में, रसोई में, खेतों में, हर जगह छिपा हुआ होता है। बस उसे पहचानने वाले की नजर चाहिए।
2: तो क्या मिश्र धातु भी हमारे घर में मिल जाएगी?
3: सीधे सीधे नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्टील का चम्मच, ठीक है, और ये पीतल की कटोरी,
2: ठीक है,
3: दोनों धातुओं से बने, लेकिन दोनों के गुण एक जैसे नहीं है।
2: वो तो है, दोनों का रंग भी अलग है और वजन भी अलग है।
3: बिल्कुल। अब जरा सोचो, अगर हमें ऐसी धातु चाहिए जो बहुत मजबूत भी हो, जल्दी जंग भी ना लगाए, बहुत अधिक गर्मी भी सह सके और वजन में हल्की हो, तो क्या केवल एक धातु से काम चल जाएगा?
2: शायद नहीं।
3: यही सोच वैज्ञानिकों ने भी अपनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर ऐसी नई धातुएं बनाई जिनमें कई अच्छे गुण एक साथ हो गए। इन्हें ही मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं।
2: यानी जैसे अलग अलग मसालों को सही मात्रा में मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया जाता है।
3: बिल्कुल वैसे ही बेटा। यदि किसी व्यंजन में केवल नमक ही डाल दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और दूसरे मसाले सही सही मात्रा में मिलते हैं तभी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक उसी तरह धातुओं के साथ भी होता है बेटा।
2: वाह दादू, अब मुझे मिश्र धातु का मतलब समझ में आया।
3: लेकिन बिटिया कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
2: कहानी समाप्त नहीं होती मतलब?
3: घर में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं और लड़ाकू विमान या रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं।
2: ऐसा क्यों होता है दादाजी?
3: क्योंकि उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती बेटा। सोचो, एक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति के आसपास उड़ रहा है। उसके इंजन के भीतर तापमान कई स्थानों पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी ओर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव झेल रही होती है। वहीं रॉकेट को प्रक्षेपण के समय भीषण कंपन, अत्यधिक ताप और अपार बल का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में साधारण धातु अपना आकार बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है या टूट भी सकती है।
2: यानी हर कठिन काम के लिए अलग तरह की धातु चाहिए दादाजी।
3: बिल्कुल, और ऐसी ही विशेष धातुओं का निर्माण करने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो केवल उत्पादन ना करे बल्कि लगातार नई धातुओं पर अनुसंधान भी करे।
2: क्या तभी मेधानी की स्थापना हुई थी? लगता है यही बताना जा रहे हैं आप मुझे।
3: अब तुम सही दिशा में पहुंच गई हो। हाँ, ये अखबार वाला आया है क्या?
2: हाँ दादू, रुकिए मैं अखबार लेकर आती हूँ।
3: हाँ हाँ।
2: अरे दादू, इसमें तो किसी रॉकेट प्रक्षेपण की तस्वीर छपी है।
3: देखा, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं बेटा। रॉकेट उड़ गया, मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, नया लड़ाकू विमान बना, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे उन धातुओं का भी योगदान है जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता।
2: सच दादू, हम मशीन तो देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाली धातु के बारे में शायद ही सोचते हैं।
3: और आज की हमारी यात्रा उसी अनदेखे नायक की कहानी है।
2: दादू लगता है हमारी ये यात्रा किसी पाठशाला से कम नहीं रही।
3: सही सही, बिल्कुल सही कहा बेटा।
2: एक बात तो मुझे अब समझ में आई है कि विशेष मिश्र धातुएं क्यों जरूरी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब आज से 50-60 साल पहले ना तो इतने आधुनिक कंप्यूटर थे न इतनी मशीनें थीं, तब भारत ने इतनी कठिन धातुएं बनाने की शुरुआत कैसे की होगी।
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और इसी प्रश्न का उत्तर हमें सन 1973 में ले जाता है।
2: 1973 यानी आज से लगभग आधी सदी पहले।
3: स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये निश्चय तो कर लिया था कि हमें रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी।
2: समस्या? कौन सी समस्या दादू?
3: भाई मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो, सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो, सबसे कुशल इंजीनियर हो, लेकिन जिस धातु से मशीन बननी है वही तुम्हारे पास ना हो तो क्या होगा?
2: फिर तो सारी योजना ही रुक जाएगी दादाजी।
3: बिल्कुल, उस समय भारत के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। विशेष धातुएं विदेशों से मंगानी पड़ती थी। वो बहुत महंगी होती थी, हर समय उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी देश अपनी सर्वोत्तम तकनीक आसानी से साझा नहीं करता था।
2: यानी यदि किसी कारण से वे धातुएं मिलना बंद हो जाती तो हमारे कई बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते थे।
3: ठीक यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के मन में भी थी। उन्होंने सोचा जब रॉकेट, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हमारी होंगी तो उन्हें बनाने वाली धातु भी हमारी ही होनी चाहिए।
2: ये तो है।
3: इसी दूरदृष्टि का परिणाम था वर्ष 1973 में हैदराबाद में स्थापित हुआ मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या हुआ?
2: मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
3: वेरी गुड, जिसे आज पूरा देश मिधानी के नाम से जानता है।
2: यानी मिधानी की स्थापना केवल एक नया कारखाना बनाने के लिए नहीं हुई थी बल्कि भारत को उन धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी जिन्हें भविष्य की तकनीक की रीढ़ माना जाता है।
3: बिल्कुल, शाबाश। और यही कारण है कि मिधानी केवल धातु नहीं बनाती, वो भारत के वैज्ञानिक सपनों को आकार देती है।
2: ओहो दादू, लो अब बिजली चली गई, इन्वर्टर क्यों नहीं चला लेकिन?
3: हाँ बेटा, लगता है इन्वर्टर भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है।
2: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, अगर बिजली चली जाए तो हम थोड़ी देर असुविधा में रहते हैं, लेकिन अगर किसी देश को जरूरत के नाम पर विशेष धातुएं ही ना मिले तो?
3: तब केवल असुविधा नहीं होती बिटिया, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियान, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: अब समझ में आया, इसलिए विशेष धातुओं में आत्मनिर्भर होना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा।
3: और अभी तो तुमने मिधानी की दुनिया का दरवाजा ही खोला है, अभी तुम्हें टाइटेनियम की कहानी सुननी है, सुपर मिश्र धातुओं का विज्ञान समझना है, विशेष इस्पात की ताकत जाननी है।
2: अच्छा दादू, ये टाइटेनियम धातु में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा करती है?
3: मान लो तुम्हें तीन अलग अलग काम करने हैं। एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर रोज हजारों वाहन चलेंगे,
2: ठीक है।
3: एक ऐसा हवाई जहाज बनाना है जो आसमान में ध्वनि की गति से उड़ सके, और एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। तो क्या तुम इन तीनों में से एक ही प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहोगी?
2: नहीं दादू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरतें अलग अलग हैं। देखिए ना, अब पुल को मजबूती चाहिए, हवाई जहाज को हल्कापन चाहिए, और रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए कि वो आग और अत्यधिक तापमान को भी सह सके। सही कहा ना मैंने?
3: बिल्कुल, यही कारण है बेटा कि मिधानी केवल एक धातु नहीं बनाती बल्कि अनेक प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, और ऐसी ही एक धातु है टाइटेनियम।
2: दादाजी, टाइटेनियम का नाम मैंने कई बार सुना है।
3: चलो चलो चलो, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अगर मैं तुम्हें दो छड़ें दूं, पहले लोहे की, दूसरी टाइटेनियम की, और दोनों की मजबूती लगभग समान हो, लेकिन टाइटेनियम वाली छड़ वजन में काफी हल्की निकले, तो तुम किसे चुनोगी?
2: जाहिर है दादाजी, टाइटेनियम वाली ही चुनूंगी, क्योंकि उसमें मजबूती भी है और उसका वजन भी कम है।
3: सही कहा बेटा, टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है, इस पर जंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और ये अत्यधिक तापमान को भी सह सकता है, इसी कारण इसे अंतरिक्ष, रक्षा और विमानन जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिना जाता है।
2: यानी लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि विमान मजबूत भी रहे और भारी भी ना हो।
3: यदि विमान का वजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन लगेगा, गति कम होगी और उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी, इसलिए हर अतिरिक्त किलोग्राम बचाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2: अच्छा, और रॉकेट में?
3: रॉकेट में इसका महत्व और बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ हर ग्राम वजन की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? रॉकेट जितना हल्का होगा उतना अधिक भार अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा।
2: वाह दादू, एक धातु का चुनाव भी पूरे मिशन की सफलता पर तय कर सकता है।
3: सिर्फ टाइटेनियम ही नहीं, मिधानी की प्रयोगशाला में ऐसी धातुएं भी बनती हैं जिन्हें सुपर मिश्र धातुएं कहा जाता है।
2: सुपर मिश्र धातु? दादू, क्या ये सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी होती है?
3: हाँ हाँ बेटा, इसलिए इन्हें गैस टर्बाइन इंजनों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट इंजनों, अंतरिक्ष यानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे अत्यंत कठिन वातावरण में उपयोग किया जाता है।
2: मिधानी जैसी संस्थाओं में केवल धातु नहीं बनाई जाती बल्कि वर्षों तक उनका परीक्षण भी किया जाता होगा ना?
3: हाँ बेटा, हर नई मिश्र धातु को कई कसौटियों पर परखा जाता है, उसकी मजबूती, गर्मी सहने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता, जंग से बचाव और लंबे समय तक टिके रहने जैसे अनेक गुणों की जांच की जाती है।
2: दादू, आपने टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातुओं की बात बताई, लेकिन क्या मिधानी केवल यही बनाती है?
3: नहीं नहीं बेटा, मिधानी की एक और बड़ी पहचान है, विशेष इस्पात।
2: दादू, इस्पात तो हम रोज सुनते हैं, फिर विशेष इस्पात में क्या अंतर होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न। जिस प्रकार हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार इस्पात भी एक जैसा नहीं होता। किसी इस्पात को अधिक कठोर बनाया जाता है, किसी को अधिक लचीला, और किसी को ऐसा कि वो वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में कभी खराब ना हो।
2: मतलब जरूरत के अनुसार उसके गुण बदले जाते हैं।
3: बिल्कुल बेटा, रक्षा उपकरणों, पनडुब्बियों, मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों और अनेक भारी मशीनों के लिए ऐसे विशेष इस्पात की आवश्यकता होती है जिसमें मजबूती और टिकाऊपन दोनों होता है।
2: शायद इसलिए मिधानी को देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की एक मजबूत नींव कहा जाता है।
3: बिल्कुल बेटा, और अब समय आ गया है उन लोगों की बात करने का जो इन धातुओं को केवल बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें निरंतर बेहतर भी बनाते रहते हैं।
2: मैं बताती हूँ। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता।
3: हाँ बेटा, बिल्कुल सही। धातुओं की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
2: दादू, अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आखिर मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता करते क्या हैं? क्या उनका काम केवल धातु बनाना होता है?
3: यही तो सबसे सुंदर बात है बिटिया। धातु स्वयं कभी महान नहीं बनती, उसे महान बनाते हैं वे लोग जो उसके गुणों को समझते हैं। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता केवल धातु नहीं बनाते बल्कि उसकी प्रत्येक विशेषता को गढ़ते हैं।
2: यानी किसी विशेष धातु के बनने के पीछे भी अनेक लोगों की मेहनत, अनुभव और वैज्ञानिक सोच होती होगी।
3: यही तो किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान की विशेषता होती है। यहाँ हर व्यक्ति एक अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई नई मिश्र धातु की संरचना तैयार करता है तो कोई उसे पिघलाने की प्रक्रिया तय करता है, कोई उसकी गुणवत्ता की जाँच करता है और कोई ये सुनिश्चित करता है कि वो धातु रक्षा या अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है या नहीं।
2: यानी एक छोटी सी धातु तैयार करने के पीछे भी पूरी एक टीम काम करती है।
3: हाँ बेटा, कई बार तो किसी नई मिश्र धातु को विकसित करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग जाता है।
2: दादू, क्या वैज्ञानिक सचमुच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं?
3: हाँ बेटा, जहाँ विशेष धातुओं का निर्माण होता है वहाँ अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा चश्मे, दस्ताने और आधुनिक उपकरणों की सहायता से ये कार्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ साधारण लोहे को नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को आकार दिया जा रहा होता है।
2: भविष्य की तकनीक, दादू कितना सुंदर विचार है ना।
3: और याद रखो, विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती बेटा, हर नए विचार को प्रयोगों से सिद्ध करना पड़ता है।
2: यानी असफलता भी उनके काम का हिस्सा होती है।
3: एक वैज्ञानिक असफल प्रयोग से निराश नहीं होता बल्कि ये समझता है कि अब उसे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है।
2: दादू, आपने बताया था कि मिधानी के वैज्ञानिक नई नई मिश्र धातुएं विकसित करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि किसी नई धातु की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है।
3: देखो, किसी भी विशेष धातु का जन्म भट्टी में नहीं बल्कि एक आवश्यकता से होता है।
2: आवश्यकता से?
3: मान लो रक्षा वैज्ञानिकों को ऐसा लड़ाकू विमान बनाना है जो पहले से अधिक तेज उड़ सके, या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसा रॉकेट चाहिए जो अधिक भार लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तब वे सोचते हैं क्या वर्तमान धातुएं इस काम के लिए पर्याप्त हैं?
2: और यदि उत्तर ना हो तो?
3: तो वहीं से मिधानी के वैज्ञानिकों का नया सफर शुरू हो जाता है।
2: नया सफर? तो दादू, सबसे पहले क्या किया जाता है?
3: सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि नई धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कितना मजबूत होना है, कितना हल्का होना है, कितनी गर्मी सहनी है और कितने वर्षों तक बिना खराब हुए काम करना है।
2: यानी पहले लक्ष्य तय होता है, फिर धातु बनाई जाती होगी।
3: बिल्कुल बेटा, उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से धातु की संरचना पर काम किया जाता है। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि किन

0: कभी धातु की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है?
1: बिल्कुल, ऑक्सीजन या अन्य गैसें कुछ धातुओं के गुण में बदल जाती हैं। इसलिए विशेष धातुओं के निर्माण में वातावरण तक को नियंत्रित किया जाता है बेटा।
0: फिर धातु तैयार की जाती होगी?
1: नहीं बिटिया, अभी तो ये शुरुआत है। पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी आंतरिक संरचना सही बन पाए।
0: यानी जल्दी ठंडा करने से भी फर्क पड़ सकता है।
1: कई बार ठंडा करने की गति ही धातु की मजबूती तय करती है बेटा, इसलिए हर चरण समय और तापमान के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
0: उसके बाद?
1: उसके बाद बेटा फिर बारी आती है फोर्जिंग प्रेस की। इसमें भारी दबाव देकर धातु को नया आकार दिया जाता है, इससे उसकी आंतरिक संरचना और अधिक मजबूत हो जाती है।
0: मतलब धातु को केवल पिघलाया ही नहीं जाता, उसे गढ़ा भी जाता है।
1: हाँ बेटा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अभियंता धातु को आकार देकर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं।
0: और दादू, फिर उसकी जाँच होती होगी?
1: हाँ हाँ बेटा, यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से उसकी सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसकी कठोरता मापते हैं, उसे खींचकर, मोड़कर और दबाव देकर परखा जाता है। कई नमूनों को अत्यधिक तापमान और कठिन परिस्थितियों में भी जांचा जाता है।
0: दादू, इतनी सारी परीक्षाएं?
1: क्योंकि बेटा रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुमान की कोई जगह नहीं होती, वहाँ केवल वही धातु पहुँचती है जिसने हर परीक्षा सफलता से पार की हो।
0: सो तो है दादाजी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मिधानी में बनी हर धातु की अपनी एक कहानी होती होगी।
1: हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर विशेष धातु की अपनी एक यात्रा होती है।
0: यात्रा?
1: हाँ बेटा, कल्पना करो, अभी अभी मिधानी की प्रयोगशाला में एक विशेष मिश्र धातु तैयार हुई है। गुणवत्ता की हर परीक्षा में वो सफल रही, अब उसे सावधानी से पैक किया जा रहा है। अब जब देश को जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वो वहीं पहुँच जाएगी।
0: यानी एक ही संस्थान से निकली धातु अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है।
1: इसी तरह अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वहाँ ना मरम्मत करने कोई मिस्त्री जा सकता है, ना कोई पुर्जा बदलने की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए धातु पहली बार में ही विश्वसनीय होनी चाहिए।
0: अच्छा दादू, क्या मिधानी की धातुएं समुद्र तक भी पहुंचती हैं?
1: हाँ बेटा, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के अनेक उपकरणों में भी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। समुद्र का खारा पानी सामान्य धातुओं पर जल्दी असर डाल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिन समुद्री वातावरण में भी लंबे समय तक अपना काम बखूबी कर सकती हैं।
0: दादू, क्या केवल रक्षा क्षेत्र ही इन धातुओं का उपयोग करता है?
1: नहीं नहीं बेटा, विशेष धातुओं की आवश्यकता ऊर्जा क्षेत्र में भी पड़ती है। कुछ धातुएं ऐसे उपकरणों में उपयोग होती हैं जो बहुत अधिक तापमान और दबाव पर लगातार काम करते हैं। यदि वहाँ साधारण धातु लगा दी जाए तो पूरा संयंत्र प्रभावित हो सकता है।
0: यानी धातु का चुनाव केवल मजबूती नहीं सुरक्षा से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल बेटा, इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी धातु को उपयोग में लेने से पहले उसके प्रत्येक गुण का गहराई से अध्ययन करते हैं।
0: अच्छा दादू, इन विशेष धातुओं का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है?
1: ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
0: सच में?
1: हाँ बेटा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम जोड़ हड्डी का विशेष इम्प्लांट या कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लगाए जाते हैं, तब भी ऐसी धातुओं की आवश्यकता होती है जो शरीर के अनुकूल हों, मजबूत हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
0: दादू, मिधानी तो देश के सपनों को आकार देती है।
1: हाँ बेटा, उन सपनों में कहीं एक सैनिक का विश्वास होता है तो कहीं एक वैज्ञानिक का वर्षों का परिश्रम, कहीं एक वैमानिक का साहस होता है और कहीं एक मरीज की नई उम्मीद।
0: दादू, मुझे लगता है कि ये कहानी केवल मिधानी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो चुपचाप देश को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं।
1: सही कहा बेटा तुमने, और मैं देश के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, यदि तुम्हें विज्ञान अच्छा लगता है, यदि तुम्हें नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में आनंद आता है, तो याद रखना, भविष्य का कोई वैज्ञानिक, अभियंता या शोधकर्ता आज किसी विद्यालय की कक्षा में बैठा हो सकता है। हो सकता है अगली पीढ़ी के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान के लिए नई धातुएं खोजने वाला वैज्ञानिक आज हमारी ही तरह जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछ रहा हो।
0: यानी बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से होती है।
1: हाँ बेटा, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी शक्ति।
0: रुकिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है।
1: हाँ बेटा हाँ, जरा पानी का गिलास दे देना।
0: हाँ दादू, ये रहा आपका गिलास। दादू, मेरी दोस्त आई है, मैं थोड़ी देर में नीचे से आती हूँ।
1: अच्छा बेटा, ठीक है।
0: श्रोताओं, आज के इस रोचक सफर में हमने जाना कि मिधानी केवल विशेष धातुओं का निर्माण करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक और अभियंता अपने ज्ञान, शोध और अथक परिश्रम से ऐसी धातुएं विकसित करते हैं जो हमारे लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों, अंतरिक्ष अभियानों और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई शक्ति प्रदान करती है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि विज्ञान के प्रति हम जिज्ञासा बनाए रखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सीखते रहेंगे और अपने ज्ञान से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

देश के संस्थान, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर। इस कार्यक्रम को स्वर दिया दीपक नेमा और भगवती सक्सेना ने। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है आजाद हिंद आज की कड़ी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर के जीवन पर आधारित है।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में।
2: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं लेकर आजाद हिंद। श्रोताओं, आज हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर जी की।
1: अमृत कौर जी का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राजा हरनाम सिंह जी के यहाँ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले घर पे हुई और उसके बाद इंग्लैंड में हुई।
2: विद्यार्थी काल में ही इन्होंने खेलों खेलों में बहुत से रिकॉर्ड कायम किए और आगे चलकर पंजाब में खेलकूद संगठन की स्थापना की।
1: हम राजकुमारी अमृत कौर जी की और बातें करें, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राजकुमारी अमृत कौर जी ने 16 सालों तक गांधी जी के साथ उनकी निजी सहायक के तौर पर काम किया और कई उल्लेखनीय काम किए, जिनमें प्रमुख है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, भारतीय मताधिकार के प्रश्न पर लुधियन कमेटी के सामने गवाही,
1: महिला प्रतिनिधि मंडल में भागीदारी और भारतीय संविधान संशोधन की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पार्लियामेंट के सम्मुख गवाही आदि प्रमुख हैं।
0: 1930 के नमक सत्याग्रह के तहत वो बंबई में गिरफ्तार होकर जेल गईं। 1937 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में काम करने के कारण गिरफ्तार किया गया और 50 रुपए जुर्माना और एक दिन की सजा के बाद छोड़ दिया गया।
1: इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वे जुलूसों का नेतृत्व करने लगीं। हम इनके बारे में और भी जानेंगे, मगर इस गीत के बाद।

0: राजकुमारी अमृत कौर जी के जुलूसों पर लाठी चार्ज किया गया। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक उनके जुलूसों पर कुल 15 बार लाठी चार्ज किया गया, मगर इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई, लिहाजा सरकार इनको ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रख सकी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
1: अपनी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही इनकी तबीयत खराब होने लगी और कमजोरी बढ़ने पर उनको वापस शिमला भेज दिया गया। उन्हें 20 महीनों तक नजरबंद रखा गया और जब वो जेल में थीं, तभी उनके भाई की मृत्यु हो गई। मगर इन्हें अपनी भाभी को एक संवेदना पत्र भी नहीं भेजने दिया गया।
0: मगर ये सभी मुसीबतें उनके हौसलों को नहीं डिगा सकी। वो मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने आजादी के बाद भी महिला शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। वे स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं और इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लागू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन व रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इनका निकट संपर्क रहा और शिशु कल्याण की भारतीय परिषद की भी स्थापना की
1: और समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया। आज हमारे देश की उन्नति में इन जैसे समाज सेवियों की दूरदर्शिता का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा इनको शत शत प्रणाम।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर के जीवन पर आधारित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब से थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

0: देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीस आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टैग लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी

उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार
बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी। स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में
घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों,

इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वेसालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है।
वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। या प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स,
और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम 90.8 MHz पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 11वां भाग सुन रहे हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: श्रोताओं, आज का युग तेज है। हम तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुके हैं। एक स्पर्श में संसार हमारी हथेली पर आ जाता है। इसके अपने लाभ हैं, अपनी सुविधाएं हैं, पर कहीं ना कहीं इसकी एक अनकही कीमत भी है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी सुंदर रश्मि रथी का काव्य पाठ चल रहा था, अचानक से मैं ये सब क्या कहने लग गई। दरअसल मित्रों, एक समय था जब घरों में पुस्तकें खुलती थीं, कहानियां सांझ की दीप शिखा के साथ जीवित हो उठती थीं, दादी नानी के स्वर में इतिहास सांस लेता था। उन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार जन्म लेते थे। संस्कृति के प्रति सम्मान और साहित्य के प्रति अनुराग पनपता था।
1: आज वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती दिखाई देती है। इसका प्रभाव बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारी मानसिकता, हमारी संवेदना, हमारे धैर्य सब पर पड़ रहा है। अच्छा साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं होता, वो जीवन जीने की दृष्टि देता है, विचारों को दिशा देता है और चरित्र को गढ़ता है।
2: इसी उद्देश्य से तो हमने अपने श्रोताओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम काव्य गुंजन आरंभ किया है, ताकि हम अपने देश के महान साहित्यकारों और कवियों की रचनाओं से पुनः जुड़ें, उनके संघर्ष, उनके आदर्श और उनके चिंतन को आत्मसात कर सकें। जब हम ऐसी कृतियों को सुनते हैं ना, तो केवल कथा नहीं सुनते, हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। तो आइए श्रोताओं, उसी चेतना के साथ बढ़ते हैं चतुर्थ सर्ग के अंतिम अंशों की ओर।
1: और आज चतुर्थ सर्ग के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हुए हम केवल काव्य पाठ नहीं करेंगे, हम उस धड़कन को सुनेंगे जो इतिहास के सीने में गूंजती है। देवता और मानव आमने सामने हैं, पर ये टकराव शस्त्रों का नहीं, संकल्पों का है। दिनकर जी ने विभिन्न लेखों और साक्षात्कारों में यह स्पष्ट कहा था कि उनका कर्ण के प्रति विशेष आकर्षण था। दिनकर जी कर्ण को केवल पौराणिक पात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय और उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक मानते थे। दिनकर जी स्वयं कर्ण के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे उसे केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि उस मनुष्य का प्रतीक मानते थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पौरुष और आत्मसम्मान के बल पर खड़ा रहता है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को विस्तृत कीजिए, क्योंकि आगे जो घटित होगा वो त्याग का वो स्वर है जिसे समय भी मौन होकर सुनता है। आइए वापस चलते हैं उसी गंगा के तट पर, जहां देवराज इंद्र खड़े हाथ फैलाए कर्ण के समक्ष, और कर्ण मानो स्वयं में तीनों लोक का सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग का भाग 6 का काव्य पाठ और चर्चा।
3: भुज को छोड़ ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं, ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत गुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है। विजय दान करता ना प्राण को रख कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा? इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा? अब जाकर कहिए, पुत्र मैं प्रथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है, और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा।
2: यह कह उठा कृपाण कर्ण ने, त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में।
1: चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, जो कि त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महा तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले,
4: अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगूं क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा, नर जीता सुर हारा।
2: जब कर्ण ने कृपाण उठाई वह केवल देह भेदन का क्षण नहीं था, वह तपस्वी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। जैसे आदित्य अपने ही अंश का तेज उतारकर जगत को समर्पित कर दे, वैसे ही उसने कवच कुंडल शरीर से विलग कर दिए और पीड़ा समाधि से स्थिर स्वर्ण का आवरण उतरा, किंतु आत्म तेज सहस्र गुना दीप्त हो उठा। उस मार्मिक दृश्य में प्रतीत होता है मानो कवि ने केवल वर्णन नहीं किया, स्वयं कर्ण को ही जी लिया हो। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य तपस्या की चरम परिणति है।
1: उस क्षण देवराज की स्थिति भी विचित्र हो उठी, जैसे मेघ अपने ही गर्जन से चौंक जाए, जैसे वज्रधारी के हाथ से वज्र ही भारी पड़ जाए, वैसे ही इंद्र कर्ण के त्याग के सम्मुख स्तब्ध रह गए। उनका मुखमंडल मानो ग्रहण ग्रस्त चंद्र सा मलिन पड़ गया। देवलोक का अधिपति वहां एक संकोच ग्रस्त मनुष्य सा खड़ा था, जो छल लेकर आए थे वही त्याग की ज्वाला में दग्ध हो उठे। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की ऊंचाई अचानक झुक गई हो और धरती का एक वीर आकाश से भी अधिक विराट हो गया हो।
2: श्रोताओं, आज के समय में जब लोग सफलता के लिए समझौते करने को तैयार हो जाते हैं ना, तो कर्ण का चरित्र हमें यहाँ ये सिखाता है कि चरित्र की ऊंचाई पद या शक्ति से बड़ी होती है। उसके पास जीवन बचाने का अवसर था, किंतु उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और इंद्र का झुकना हमें ये बताता है कि कभी कभी अधिकार और पद भी नैतिकता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। सच्ची विजय वही है जहाँ मनुष्य अपने मूल्यों पर अडिग रहे, चाहे परिणाम उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसलिए इस प्रसंग की शिक्षा सरल है, शक्ति जन्म से नहीं चरित्र से बनती है, और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है।
1: मित्रों, सचमुच यह क्षण केवल एक दान का प्रसंग नहीं, मनुष्यता के गौरव का महोत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भी इस दृश्य को निहार कर विस्मित रह गई हो। दिशाओं में जो ध्वनि गूंज रही है उसे प्रशंसा कहें, वंदना कहें या विजय घोष, क्योंकि आज एक मनुष्य अपने त्याग से देवताओं के समकक्ष नहीं उनसे भी ऊंचा दिखाई देता है। कर्ण ने कवच और कुंडल देकर केवल अपना शरीर नहीं हल्का किया, उसने दान की परिभाषा को ही विस्तृत कर दिया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, रश्मिरथी की यात्रा अभी आगे बढ़नी है और कर्ण का संघर्ष भी अभी अधूरा है। उसका युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं उस दिन आरंभ हो गया था जब उसे अपने ही भाग्य से जूझना पड़ा था। अब अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे चतुर्थ सर्ग के अंतिम पड़ाव में, जहां सुनेंगे भाग 7 का काव्य पाठ।
4: हां हां पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिखेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र ये नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण, कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दूरदर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो।
2: तब कर्ण ने कहा,
5: धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर? बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो।
2: तब देवराज बोले,
4: कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा? और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से? अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।
1: दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, गया कर्ण निज घर को।
2: श्रोताओं, ये प्रसंग केवल इंद्र और कर्ण का संवाद नहीं है, ये मनुष्य और देवत्व के बीच खड़ी उस अदृश्य रेखा का प्रसंग है जहां आकर सारे मानदंड बदल जाते हैं। देवराज इंद्र स्वयं अपराध बोध से भरे खड़े हैं और कर्ण सब कुछ देकर भी निर्भर, निर्विकार और उज्जवल दिखाई देता है। यही तो इस प्रसंग का चमत्कार है। दान देने वाला छोटा नहीं हुआ, लेने वाला बड़ा नहीं हुआ, उल्टे दान ने कर्ण को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर इंद्र स्वयं अपनी ओर देखने में संकोच अनुभव करते हैं। लोक में कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। कर्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, अपमान की अग्नि, उपेक्षा की धूप और संघर्ष की आंधियों ने उसे जलाया अवश्य, परंतु अंततः वही अग्नि उसके व्यक्तित्व को कुंदन बना गई।
1: मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात कह रहे हैं। वे ये नहीं दिखा रहे कि कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए, वे ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि वो क्या छोड़ सकता है इसमें निहित है। संग्रह सहज है, त्याग कठिन, मुट्ठी बांधना सरल है, हाथ खोलना कठिन। और जब कोई मनुष्य अपने प्राणों की सुरक्षा तक दान कर दे, तब वो केवल दानी नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है। कर्ण का तेज इसी त्याग से जन्मा है। इसीलिए इंद्र कहते हैं, जहां तुम पहुंच गए हो वहां देवत्व भी नहीं पहुंच सकता। कितना विलक्षण कथन है। दिनकर जी मानो कह रहे हो कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ पर विजय पा लेता है, तब वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है।
2: और यहाँ इस प्रसंग की एक और बात अत्यंत स्पष्ट करती है। जब इंद्र वर मांगने को कहते हैं, तब कर्ण धन, राज्य, विजय या आयु नहीं मांगता। वह केवल ये प्रार्थना करता है कि धर्म में उसका भाव अचल रहे। कितना विशाल चिंतन है ये। सामान्य मनुष्य संकट के समय सुरक्षा चाहता है, कर्ण धर्म चाहता है। वह कवच नहीं मांगता, वह आस्था मांगता है। वह रक्षा नहीं मांगता, वह निष्ठा मांगता है। मानो कह रहा हो कि यदि धर्म साथ है तो कवच की आवश्यकता नहीं, और यदि धर्म साथ नहीं है तो कवच भी व्यर्थ है। यही भारतीय चिंतन की आत्मा है, जहां बाहरी शक्ति से अधिक महत्व भीतरी स्थिरता को दिया गया है।
1: आज के समय में जब मनुष्य का मूल्य प्रायः उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव से आंका जाने लगा है, तब कर्ण का ये प्रसंग हमें भीतर झांकने को विवश करता है। हम क्या बचा रहे हैं और किसके लिए बचा रहे हैं? जीवन भर हम जोड़ते रहते हैं धन, वस्तुएं, संबंध, पहचान, परंतु में मनुष्य को बड़ा उसका संग्रह नहीं बनाता, उसका समर्पण बनाता है। नदी इसलिए पूजनीय नहीं कि वो जल रोक कर रखती है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। कर्ण भी उसी नदी की तरह है, देता जाता है, देता जाता है, और जितना देता है उतना ही विराट होता जाता है। और शायद यही कारण है कि दिनकर जी ने कर्ण को अपना नायक बनाया। महाभारत में विजेता और भी हैं, राज सिंहासन पाने वाले और भी हैं, पर कर्ण जैसा चरित्र दुर्लभ है। वो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से बनती है। जन्म उसके हाथ में नहीं था, अपमान उसके हाथ में नहीं था, समाज का व्यवहार उसके हाथ में नहीं था, पर उसका आचरण उसके हाथ में था, और उसने वही चुना जिससे उसका व्यक्तित्व अमर हो गया। यही रश्मि रथी का मर्म है और यही दिनकर जी का संदेश है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग का सबसे मार्मिक पक्ष शायद यही है कि यहाँ दान समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा आरंभ करता है। कवच कुंडल शरीर से अलग हुए हैं, किंतु कर्ण का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा है। देवराज अमोघ शक्ति देकर लौट गए, किंतु संवाद के बाद हमारे मन में जो प्रश्न, जो भाव, जो प्रेरणा शेष रह जाती है, वही इस काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि महान साहित्य वही होता है जो कथा समाप्त होने के बाद भी भीतर कुछ बोलता रहे। और उसी भावपूर्ण क्षण के साथ चतुर्थ सर्ग का ये अध्याय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। दान की यह ज्योति, धर्म की ये दृढ़ता और चरित्र की ये ऊंचाई आने वाले प्रसंगों में भी हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। सच ही तो कहा गया है, समय साम्राज्यों को भुला देता है किंतु त्याग की कथाओं को नहीं। कर्ण का कवच न रहा, कुंडल न रहे, परंतु उसकी कीर्ति का कवच आज भी अक्षत है। यही उसकी विजय है, यही उसकी अमरता है। श्रोताओं, कभी कभी सिर्फ मौन रहने का ही मन होता है। ऐसे काव्यांश को सुनकर लगता है कि उसी चिंतन में रहें। सुनने वाले भी जैसे सब कुछ हार जाते हैं, हृदय में मानो इतिहास के वो पन्ने अंकित हो जाते हैं। उन्हीं पन्नों पर मनोरथ दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ रहा है रश्मि रथी का रथ। और देखिए कैसी अद्भुत दृष्टि रही कवि की, जिसने इस क्षण को केवल युद्ध कथा नहीं रहने दिया, बल्कि मानव गरिमा का घोष बना दिया। हाँ, यह शब्दों का नहीं, आत्मा का चित्रण है। जिस तरह कर्ण का तेज सबके सामने आता है, लगता है कवि ने उसे देखा ही नहीं, जिया है। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की महिमा है।
1: मित्रों, आज हमने उस अद्भुत प्रसंग को सुना जहां देव राजेंद्र स्वयं याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आए और उनसे जन्मजात कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण सब कुछ जानते थे, वे ये भी जानते थे कि ये दान उनके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा छीन लेगा। फिर भी उन्होंने अपने वचन, अपने धर्म और अपनी दानशीलता को जीवन से अधिक महत्व दिया। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत के महान योद्धा नहीं रहते, बल्कि त्याग, स्वाभिमान और आदर्श के शिखर पुरुष बन जाते। तो मित्रों, आज की सीख सरल है। सम्मान पद से नहीं, आचरण से मिलता है, और विजय परिणाम में नहीं, निर्णय में छिपी होती है। अब आगे का सर्ग और भी कठोर प्रश्न लेकर आएगा। रण समीप है और आदर्श की अग्नि परीक्षा अभिशेष है। तो अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर आपसे होगी भेंट, जहां आरंभ होगा रश्मि रथी का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी पंचम सर्ग। वहां एक मां का पश्चाताप है, एक पुत्र का स्वाभिमान है और नियति के सबसे करुण अध्यायों में से एक हमारा इंतजार कर रहा है। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी आपकी रेडियो सखी भगवती सक्सेना ने,
4: मैं प्रवीण महुआले,
6: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: तो दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हमने रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ आरंभ होगी। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम और शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरदार हुकुम सिंह के जीवन पर केंद्रित होगा। शाम 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा नशे का साथ जिंदगी का नाश। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज AI विषय पर जानकारी होगी और शाम 7:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। रात्रि के 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। रात्रि के 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर के जीवन पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 9 बजे सुनेंगे। रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ आप सुन सकते हैं। आज हम इस कार्यक्रम का 11वां भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
7: क्या तुमने सुना?
8: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
9: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो आ ही जाए।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़।

मांस मांस ईंधन जैसी आह मृत्यु आह मृत्यु आह आह तू या आने के लिए निकली ही होगी।

0: तू
1: आ मृत्यु आ।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

ठंडे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। शबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत, ए राम कब आओगे। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: जी।
1: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सितम भरा है भूपटल,
1: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
0: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
2: रही घटा विकल सितम भरा है भूपटल,
3: रही है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। सबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत,
0: ए राम कब आओगे।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मजा विश्वरूप का विचित्र वीणा वादन। उसके बाद प्रस्तुति होगी गायन की, जिसे पेश करेंगे भैरू सिंह चौहान, और अंत में सुनिएगा गायन सुगंध देवी गंधर्व का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं विचित्र वीणा वादन, प्रस्तुति पद्मजा विश्वरूप की।
1: ट्रेडिशनल कंपोजिशन है शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता। इसके तीन पार्ट हैं, स्थाई, अंतरा और सांचारी। सेकंड पार्ट है मंगलदायक तुम हो कृपा सिंधु। शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता। एंड थर्ड पार्ट इज जय जय गणाधीश सुर नर पूधीश भक्तन के हित करत हो आदेश। थैंक यू। प्रस्तुत है आपके सामने

0: इस गायन के बाद अंत में अब आपको सुनवाते हैं गायन सुगन देवी गंधर्व का।
1: कर्माबाई का भजन है, अपने भगवान कृष्ण को कैसे भोग लगाती है और भगवान कैसे उनकी बातों में आकर जो है भगवान उनके हाथ का जो है बना हुआ भोग खाते हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशियाँ लेकर आता है, परिवार को, माता पिता को, सभी को बहुत खुशियाँ होती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो डगर डगर पन पन इधर से उधर दौड़ता है, तो पीछे पीछे अपने माता पिता भी दौड़ते हैं, पीछे पीछे उनके बहुत उनको दौड़ाता है, उनको हंसाता है, रुलाता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा आता है जब वो अपनी डगर छोड़ के जाता है। कृपया शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा।

मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे चनाना चनाना चनाना चनाना मोर मुकुट पे तांबर सोहे कर में मुरलिया।

मुरलिया बाजे हैं। तिन तिन तिन तिन तिन स्नेह में ही पधारी राधा राधा राधा राधा। आन दिखित थई तान दिखित थई धैत धैत धैत रंग थई

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए प्रस्तुत है।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या

0: यशस्तमस्य मीडहुषः। हे मनुष्य, जिस प्रकार धन धान्य की कामना वाले रथों को उत्तम रीति से तैयार करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत यशस्वी, सबके लिए सुखकारी अग्निदेव की स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन करो। यह सुनीथो ददा सुषेयुर् यो जरयन्नरिम चारु प्रतीक आहुतः। जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पथ पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे शत्रुनाशक दानशील अग्निदेव का हम आवाहन करते हैं। य उश्रिया दमेश्वा दोषो शशि प्रशस्यते यस्य व्रतम न मीयते। जो अग्निदेव घरों में अपनी कांति से युक्त होकर प्रतिष्ठित होते हैं, जो अग्निदेव दिन और रात प्रशंसा के योग्य हैं, तथा जिनका व्रत कभी खंडित नहीं होता, वे अग्निदेव पूज्य तथा प्रशंसनीय हैं। आ यह स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा अंजानो अजरैरभि। जिस तरह सूर्य से द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे अविनाशी आश्चर्यकारक अग्निदेव अपनी ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। अत्रि मनु स्वराज्य मग्निमुक्थानि वा वृधुः विश्वा अधिश्रियो दधे। शत्रुनाशक तथा सुशोभित अग्निदेव स्तुतियों से अत्यंत तेजोमय होकर समस्त ऐश्वर्यों को धारण करके शोभायमान होते हैं। अग्नेरिंद्रस्य सोमस्य देवाना मूतिभिर्वयम् अरिष्यन्तः सचे महियभि श्याम प्रतन्यतः। अग्नि, इंद्र, सोम आदि अन्यान्य देवताओं के संरक्षण में हम भली भांति सुरक्षित हैं, अतः कभी भी नाश को न प्राप्त होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 8वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति गीतों के माध्यम से आज की इस शुभ संध्या पर हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे मन में सदैव प्रेम, करुणा और भक्ति बनी रहे। हमारा हर कार्य प्रभु के आशीर्वाद से प्रेरित हो और हर दिन एक नई आस्था की किरण लेकर आए।

और इसी भक्ति रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। किसी भी देश की दशा और दिशा उसके रहने वालों के आचरण पर निर्भर करती है। राष्ट्र के निर्माण में उसके कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सजग और समर्पित निवासियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो जहां और जिस दायित्व के साथ है, वो वहीं अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और ईमानदार हो, तो राष्ट्रहित में ये उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे अनगिनत राष्ट्र सेवियों ने भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। आज वतन का राग कार्यक्रम में चर्चा एक ऐसे ही निष्ठावान राजनीतिज्ञ और महान देशभक्त सरदार हुकम सिंह की। सरदार हुकम सिंह का जन्म 30 अगस्त सन 1895 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्याम सिंह था, जो एक व्यापारी थे। सरदार हुकम सिंह ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉन्टगोमरी से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और खालसा कॉलेज अमृतसर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लॉ कॉलेज लाहौर से कानून की पढ़ाई की और मॉन्टगोमरी में वकालत आरंभ की। कई सालों तक वो मॉन्टगोमरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। आगे चलकर पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की। सरदार हुकम सिंह के सामाजिक सरोकार बहुत गहरे थे। 1920 के दशक में सिख गुरुद्वारों पर ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तत्कालीन सर्वोच्च गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1923 में अधिकांश सिख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में सरदार हुकम सिंह ने भी जेल यात्रा की। उन्हें लगभग 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में जब देशव्यापी प्रदर्शन हुए, तब सरदार हुकम सिंह भी मॉन्टगोमरी की सड़कों पर उतर आए। जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सरदार हुकम सिंह घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनकी सक्रियता लगातार बनी रही।

जब देश का बंटवारा हुआ तब सरदार हुकम सिंह भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रतिभा का प्रकाश ऐसा था कि वो छुपकर नहीं रह सकते थे। बहुत जल्द वो कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इस पद पर वो नवंबर 1948 तक रहे। सन 1920 में जब शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई थी तभी से सरदार हुकम सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। वो 3 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। 3 साल तक वो मॉन्टगोमरी सिंह सभा के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। जब देश का विभाजन हुआ तब संविधान सभा की कुछ सीटें खाली हो गईं। 30 अप्रैल 1948 को सरदार हुकम सिंह संविधान सभा के सदस्य बने तथा संविधान सभा के कार्यों में पूरी तन्मयता से जुटे रहे। सरदार हुकम सिंह अंतरिम संसद के सदस्य भी थे और बाद में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली सटीक थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रशंसनीय। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर ने उन्हें सभापति तालिका में रखा था। जब कभी उन्हें सभा चलाने का अवसर मिला उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यवाही का संचालन किया। सभी लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनकी निष्पक्षता और सभा संचालन की कुशलता ऐसी थी कि वो सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। यही कारण है कि सन 1962 में वो सर्वसम्मति से तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी थी। उनका प्रयास रहता कि सदन में सभी का आचरण गरिमापूर्ण हो और संविधान में प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उचित उपयोग हो। संसद में अनुशासन और मर्यादा के लिए उन्होंने नवाचार किए। उनके विचार प्रगतिशील थे, इसीलिए वो सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीकों और प्रक्रियाओं की खोज में लगातार जुटे रहते। उन्होंने जो भी काम किया उसे पूजा की तरह किया, आराधना की तरह किया।

सरदार हुकम सिंह चाहते थे कि कार्यपालिका पर विधानमंडल का श्रेष्ठ दिशा सूचक प्रभाव हमेशा बना रहे। उनकी कार्यशैली इसी उद्देश्य के परिचालन की थी। कानून की उनकी पृष्ठभूमि और न्यायाधीश के रूप में उनका कार्य करना लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सरदार हुकम सिंह विनम्र और मृदुभाषी होने के साथ ही अपने निश्चय के पक्के और एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हुए वाद विवाद के समय सभा की अध्यक्षता की। भारत चीन युद्ध के बाद पारित किए गए अनेक प्रमुख विधानों में से एक था भारत सुरक्षा अधिनियम। ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के समय जिस प्रभावशाली तरीके से उन्होंने सभा की कार्यवाही का संचालन किया, उससे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी गरिमा और अधिक बढ़ गई। 28 अप्रैल सन 1965 को 17वें संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित रही। सरदार हुकम सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नाइजीरिया, मलेशिया, सोवियत संघ, मंगोलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फिलीपींस जैसे देशों में गए संसदीय शिष्टमंडल दल का प्रतिनिधित्व भी किया था। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। 15 अप्रैल सन 1967 को उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जून 1972 तक उन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई। एक राज्यपाल के रूप में इस पद की उच्च परंपरा को उन्होंने सदा बनाए रखा, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। सरदार हुकम सिंह के व्यक्तित्व के कई आयाम थे। कानून और राजनीति उनका कर्म क्षेत्र रहा, लेकिन इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रों में उनकी रुचि थी। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक जाने माने खिलाड़ी थे। सन 1914 से 16 के दौरान वो पंजाब विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के सदस्य रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही किसी देश के चहुमुखी विकास का आधार होती है। प्रतिभाशाली छात्रों में वो भारत का भविष्य देखा करते थे। यही कारण है कि कुछ समय वो खालसा हाई स्कूल मॉन्टगोमरी के प्रबंधक रहे और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी में कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सिख केस, द प्रॉब्लम ऑफ सिक्स, रशिया टुडे, रशिया एज आई सॉ इट आदि। देश हित में वो लगातार सक्रिय रहे। बाद के वर्षों में भी उन्होंने सिख समाज की बेहतरी के लिए अनेक कार्य किए। देश और समाज की सेवा करते हुए ही 27 मई सन 1983 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। इसके अंतर्गत आज सुनिए नशे का साथ जिंदगी का नाश, इस विषय पर मनीषा चतुर्वेदी और बाल कलाकारों से जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
2: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
2: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
2: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
2: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे
2: बड़े
4: लोग बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले, कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
2: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
2: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं?
4: जी।
2: है ना, तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया?
4: जी।
2: ठीक है, पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
2: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जबी से हुई।
2: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
4: जी,
2: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
4: जी,
2: यही कहा था आपसे,
4: जी,
2: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
2: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
2: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं, तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज़ की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
2: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज़ हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
2: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
2: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
2: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
2: जी।
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
2: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
2: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
2: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीजें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है। तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
6: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
6: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
6: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना? क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
6: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
6: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
4: जी,
6: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
6: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
6: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
6: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
6: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई बहुत, समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला। जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
6: बैठ जाते हो,
5: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
6: कोई तो सुने, पहली बात
5: कोई तो सुने। बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम है लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
6: देख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
6: मेरा पैसा मैं कुछ भी करूं,
5: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 10th या 9th थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा। और ये होता है ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
6: हद में रहो,
5: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात
6: नहीं करूँगी,
5: मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
6: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सके, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो। है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल।
6: आ सकता है?
4: जी जी।
6: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम टेक गुरु। इसके अंतर्गत आज सुनिए AI विषय पर अनुग्रह नगाइच से रत्नेश सोनी की बातचीत।
1: आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है, अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कि कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
3: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
3: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने

0: चार पांच लोगों के दो तीन दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ दो मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा। और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पर भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
0: सर ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि चार पांच लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहा है, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
0: देखिए कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक है, और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं है?
0: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे हैं, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीज़ों या तकनीक के प्रति उनकी पहुँच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
0: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
0: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है। बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है, तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई एआई तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि वन ऑन वन बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी एआई घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास एआई इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर्स है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे एआई पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
0: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
0: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बांध लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
0: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
0: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द अगले वाक्य अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
0: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड अगला लाइन अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है लेफ्ट हैंड से तो क्रिएट नहीं कर सकता, लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा, उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी। तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे, इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज एआई पर जो हमने बातचीत की, उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर एआई है क्या, एआई कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की एआई पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति, और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है आज इसका पहला भाग।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमीशनिंग वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति, नमस्कार।
2: आज कार्यक्रम का पहला एपिसोड है आपका। भारतीय थलसेना के साथ काफ़ी लंबा तारुफ रहा है। हम आपसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे और श्रोताओं को महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप एक सैनिक हैं और देश की सुरक्षा के जो इतने भी ऑपरेशंस हुए हैं, आपने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। तो मेरा प्रश्न जो है वो आर्मी ऑफिसर से है कि अगर मैं मोटे तौर पर पूछूं तो एक आर्मी ऑफिसर हमारे श्रोताओं को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में किस तरह से परिचित करवाना चाहेंगे?
3: जय हिंद श्रोताओं। भारतीय सशस्त्र सेना यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस 14 लाख के एक्टिव पर्सनल्स के साथ इस विश्व की एक सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। ये जो फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कार्यरत रहती है। हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कमांडर हैं। अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो भारतीय सशस्त्र सेना के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है कि अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना, अपने देश को भारी हमले से, किसी भी तरह के फॉरेन हमले से बचाना, एंड तीसरा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरनल सिक्योरिटी में और किसी भी तरह की आपदा में मदद प्रदान करना, और जो विश्व में यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें योगदान देना। इसमें एक्टिव जो हैं तकरीबन 14 लाख पर्सनल होते हैं और रिजर्विस्ट जो हैं वो 11.5 लाख की नफरी के साथ हैं, जिसमें कि भारतीय सेना के 12 लाख की नफरी है, हमारी इंडियन नेवी की जो है तकरीबन 70,000 की नफरी है, इवन इंडियन एयरफोर्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1.5 लाख के करीब है।
2: कर्नल साहब, आपने अपने उत्तर की शुरुआत में एक शब्द का यूज़ किया था कि हमारे देश की जो सेनाएं हैं वह विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। तो वॉलंटियर फोर्स, इससे आपका क्या तात्पर्य था?
3: काफ़ी सारे देशों में नियम होता है कि जो युवा होते हैं उनको कंपल्सरली अपने देश की सेनाओं में सर्विस प्रदान करनी पड़ती है, उसको कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। मैं अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो यूएसए में होता है, इसराइल में है, साउथ कोरिया में है और ऐसी काफ़ी कंट्रीज हैं जिसमें कि नॉर्वे है जहाँ पे कि ये रूल है। पर भारत में इस तरह का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छता से जो है अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में तो युवा इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए कि कभी भी हमारे यहाँ पे कंपलसरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है।
2: आपने बताया था कि 14 लाख एक्टिव फोर्स है, और उसके अलावा ऐसे भी क्या लोग होते हैं जो एक्टिव ना होकर जिनको बाद में बुलाया जा सकता है?
3: एक रिजर्विस्ट जो मैंने बताया था आपको, जो भी व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में
2: जी
3: सर्विस करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के लिए रिजर्विस्ट लिस्ट में रहते हैं
2: जी।
3: इसका तात्पर्य ये रहता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है
2: जी,
3: तो हमारे देश में एक ट्रेन्ड मैन पावर हमेशा अवेलेबल रहती है जिसको कि तुरंत जो है हम एक्टिव सर्विस पे वापस बुला सकते हैं। तो ये 5 साल के लिए हर व्यक्ति जो एक सोल्जर होता है
2: जी,
3: वो रिजर्विस्ट लिस्ट पे रहता है।
2: यानी अगर इमरजेंसी है और आवश्यकता आन पड़ी है तो सेवानिवृत्ति के 5 सालों के भीतर रिजर्विस्ट फोर्स में से लोगों को बुलाया जा सकता है सेवाएं प्रदान करने के लिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने अदिति।
2: और कर्नल साहब, आपने बताया था अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें मैन पावर के लिहाज से, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं का मिला के जो आंकड़ा बनता है वो 14 लाख के आसपास का बनता है। अगर हम भारत को देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या जनसंख्या के लिहाज से, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का अगर प्रश्न उठता है तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत विविधता लिए है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 14 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया मैन पावर को लेकर?
3: अदिति, आधा आंसर तो आपने खुद ही दे दिया है। जैसे कि आपने खुद ही बोला कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
2: जी,
3: विद द ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया
2: जी।
3: तो अगर हम देखें और अगर हम बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो रण ऑफ कच्छ से शुरू करके ईस्ट तक हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का है। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो तकरीबन 7,500 किलोमीटर की हमारी जो है कोस्टल लाइन है। भारत जो है वो एक बहुत ही विशाल देश है। इसके अलावा अगर आपको वदित हो, हमारा देश का एरिया है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इवन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में दो मेजर आइलैंड के ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 572 आइलैंड्स के ग्रुप हैं, एंड इसी तरह से अगर हम अरेबियन सी में देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि 36 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह है। तो इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए ये मैन पावर की हमें आवश्यकता होती है,
2: और इस मैन पावर का डिप्लॉयमेंट जो है थल के साथ साथ पानी में भी, आइलैंड्स पर भी, हिमालय में भी, कहीं पर भी होता है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप लोग भारत के कोने कोने पर अपनी मौजूदगी से हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। भारत इतना बड़ा देश है और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी सीमाएं छूती हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर हम समाज में भी रहते हैं तो हर पड़ोसी ना हमारा मित्र होता है ना दुश्मन होता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमेशा हमारे संबंध कभी मीठे नहीं रहे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा हम अपने पड़ोसियों की दृष्टिगत कैसे करते हैं?
3: देखिए, जो हमारा देश है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सबसे पहले लैंड बॉर्डर की बात करूँगा तो 15,000 से ऊपर जो है हमारा लैंड बॉर्डर है, जिसमें कि अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो हमारी सबसे पहले जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि रण ऑफ कच्छ से शुरू होके, सर क्रीक से शुरू होके, उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, राजस्थान के डेजर्ट्स के बाद पंजाब के प्लेन्स हैं से होती हुए जम्मू एंड कश्मीर के हिली टेरेन के आगे जो है कारगिल, और फिर सियाचिन जो कि जिसको कि हम सुपर आल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं, ये पूरा जो है हमारा पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर लगता है, जो कि तकरीबन 3,323 किलोमीटर है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है जिसको कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, जो कि सर रेडक्लिफ लाइन कहलाती है, एंड जम्मू के ऊपर हमारा जो एरिया है वो एलओसी है
2: जी।
3: पाकिस्तान के साथ हमारा एक शिमला समझौता हुआ था 1971 वॉर के बाद, जिसमें कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल जो भी जहाँ पे लोग थे उसके हिसाब से एलओसी कहलाती है वो। ये एलओसी जो है सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे एनजे 9842 तक डिमार्केटेड है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड मतलब एरिया है जो कि पाकिस्तान जिसपे कि अपना हक मानता है। ऑफकोर्स ये भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और सीमा है यानी कि बॉर्डर है, उसको हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह से इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अक्साई चीन वाला जो एरिया है वहाँ से हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। और ये बॉर्डर वहाँ से होता हुआ अक्साई चीन के एरिया के नीचे से, जहाँ के अभी आपने काफ़ी नाम सुने होंगे, पेंगेंग सो लेक है, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए जो है ये आगे नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुए आगे अरुणाचल के साथ जाते हैं। और ये एरिया है तकरीबन जो है 4000 किलोमीटर का हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ हमारी जो संबंध है वो जग विदित है
2: जी।
3: और ये खासकर जो हमारा उनके से सबसे बड़ा झगड़ा है वो बॉर्डर के साथ तरीके है। अगर हम चाहें तो विस्तार में इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं जी। फिर दूसरी एक जो कंट्री है जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं जो कि नेपाल है, नेपाल के साथ हमारा देश तकरीबन जो है 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरह से अगेन दूसरा एक मित्र देश भूटान है जिसमें कि हम तकरीबन 700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो म्यांमार है जिसमें कि हमारे साथ तकरीबन 1700 किलोमीटर का बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं। और बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था एंड 71 के बाद, जिसके लिब्रेशन के बाद उसको वो बांग्लादेश हुआ, इसमें अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये भी रेडक्लिफ लाइन कहलाती है जिससे जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। एक और देश है जिसके साथ हम अपना बॉर्डर साझा करते हैं वो है अफगानिस्तान। ये पीओके में है, तकरीबन 105 किलोमीटर की सीमा जो है हमारी उनके साथ साझा होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो हमारे लैंड बॉर्डर की बात है। अगर हम अब नीचे देखें यानी साउथ में देखें तो हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। तो इसमें जो है हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ये हम जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही विशाल देश है, सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इन सब की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना।
2: कई युवा रहते हैं जो आर्मी से जुड़ना चाहते हैं और उनकी स्किल अलग रहती है। एक सैनिक अफसर के अलावा कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
3: आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी सेना है तो इसमें बहुत ही डिफरेंट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे एक सोल्जर जो है लड़ने जाता है तो उसको लड़ने के लिए वहाँ पे खाना भी देना होता है,
2: जाहिर सी बात,
3: उसको कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो अगर खाना है देना है तो उसको बनाने के लिए कुक चाहिए होता है। अगर सोल्जर्स को मेंटेन, अपने कपड़े मेंटेन करने हैं तो उसको एक दर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अगर उसके पास बूट और इक्विपमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आर्मी में गाड़ियां होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है टेक्निकल बंदे, व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उनको रिपेयर कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। तो एक ये जो फोर्सेस होती हैं इसमें एक जनरल ड्यूटी के अलावा बहुत सारी टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ तक कि इवन होटल मैनेजमेंट के जो पास होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जो किसी भी फील्ड में है वो इसके लिए ट्राई कर सकता है। जो उसकी स्पेशल जो उसने क्वालिफिकेशन हासिल करी है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या वो सिविल इंजीनियर हो तो या वो मेडिकल से हो, हर तरह के जो युवा हैं वो अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं आर्मी में।
2: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आगे भी आते रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियाँ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद।
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश की संस्थान।
1: देश का चैनल, देश के लिए प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान। और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी और धातुओं में छिपी रक्षा की ताकत के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम दादू और रुचि के साथ भारत की समुद्री यात्रा पर थे। कभी मुंबई के मजगांव डॉक में पनडुब्बियों और युद्धपोतों के निर्माण को समझा, तो कभी गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे भारत ने समुद्र में अपनी शक्ति को नई पहचान दी। आज दादू और रुचि अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल, पनडुब्बियां, इन सब में एक ऐसी चीज समान होती है जिसे हम अपनी आंखों से तो देखते हैं पर इसके महत्व को शायद ही समझते हैं। वो है धातु।
1: लेकिन क्या हर धातु एक जैसी होती है? क्या साधारण इस्पात से लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं? रॉकेट का इंजन हजारों डिग्री तापमान कैसे सह लेता है? और भारत ने ऐसी विशेष धातुएं स्वयं से बनाना कब शुरू की? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज दादू और रुचि हमें लेकर चलेंगे हैदराबाद, जहां स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, अर्थात मिधानी। तो आइए चलते हैं दादू के घर।
2: दादू, आखिरकार हम घर लौट ही आए। सच कहूँ ना तो इस बार की यात्रा मेरी सोच से भी ज्यादा रोचक निकली है।
3: हाँ बेटा, लेकिन इस यात्रा ने बूढ़े शरीर को थका दिया है।
2: दादू, थोड़ी सी थकी थकी सी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने ना बहुत कुछ जाना है आपसे। थैंक यू सो मच दादाजी।
3: जी बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने को मिला।
2: दादू, एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है।
3: पूछो पूछो बिटिया।
2: दादू, हमने जहाज देखे, पनडुब्बियों के बारे में जाना, लड़ाकू विमानों के बारे में जाना, लेकिन एक बात मैंने हर जगह सुनी, विशेष इस्पात, विशेष धातु, मिश्र धातु। आखिर ये सब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या साधारण लोहे या इस्पात से काम नहीं चल सकता?
3: शांत शांत रुचि बेटा। वाह, तुम्हारा ये प्रश्न बताता है कि हमारी यात्रा सफल रही। अब तुम केवल ये नहीं पूछ रही कि क्या बनता है, बल्कि ये जानना चाहती हो कि वो कैसे बनता है।
2: तो फिर तो ये सस्पेंस खोल ही दीजिए दादाजी।
3: हाँ हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें रसोई तक चलना होगा।
2: रसोई? मिश्र धातु और रसोई का क्या संबंध है भला?
3: बहुत गहरा संबंध है बेटा। चलो चलो, आज की पढ़ाई प्रयोग करके करेंगे, ठीक है?
2: चलिए।
3: चलो आओ। देखो, रसोई में कप रखे जाने की आवाज सुनो। ठीक है, सुनी कि नहीं सुनी?
2: हाँ हाँ।
3: अब गैस पर पानी उबलने की हल्की ध्वनि को सुनो।
2: दादू, अब बताइए बिना, मैं सोच रही थी कि आज हम हैदराबाद की बात करेंगे और आप मुझे रसोई में लेकर आ गए।
3: विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता बिटिया, वो हमारे घरों में, रसोई में, खेतों में, हर जगह छिपा हुआ होता है। बस उसे पहचानने वाले की नजर चाहिए।
2: तो क्या मिश्र धातु भी हमारे घर में मिल जाएगी?
3: सीधे सीधे नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये स्टील का चम्मच, ठीक है, और ये पीतल की कटोरी,
2: ठीक है,
3: दोनों धातुओं से बने, लेकिन दोनों के गुण एक जैसे नहीं है।
2: वो तो है, दोनों का रंग भी अलग है और वजन भी अलग है।
3: बिल्कुल। अब जरा सोचो, अगर हमें ऐसी धातु चाहिए जो बहुत मजबूत भी हो, जल्दी जंग भी ना लगाए, बहुत अधिक गर्मी भी सह सके और वजन में हल्की हो, तो क्या केवल एक धातु से काम चल जाएगा?
2: शायद नहीं।
3: यही सोच वैज्ञानिकों ने भी अपनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं को उचित अनुपात में मिलाकर ऐसी नई धातुएं बनाई जिनमें कई अच्छे गुण एक साथ हो गए। इन्हें ही मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं।
2: यानी जैसे अलग अलग मसालों को सही मात्रा में मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया जाता है।
3: बिल्कुल वैसे ही बेटा। यदि किसी व्यंजन में केवल नमक ही डाल दिया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और दूसरे मसाले सही सही मात्रा में मिलते हैं तभी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक उसी तरह धातुओं के साथ भी होता है बेटा।
2: वाह दादू, अब मुझे मिश्र धातु का मतलब समझ में आया।
3: लेकिन बिटिया कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
2: कहानी समाप्त नहीं होती मतलब?
3: घर में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं और लड़ाकू विमान या रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं।
2: ऐसा क्यों होता है दादाजी?
3: क्योंकि उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती बेटा। सोचो, एक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति के आसपास उड़ रहा है। उसके इंजन के भीतर तापमान कई स्थानों पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी ओर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव झेल रही होती है। वहीं रॉकेट को प्रक्षेपण के समय भीषण कंपन, अत्यधिक ताप और अपार बल का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में साधारण धातु अपना आकार बदल सकती है, कमजोर पड़ सकती है या टूट भी सकती है।
2: यानी हर कठिन काम के लिए अलग तरह की धातु चाहिए दादाजी।
3: बिल्कुल, और ऐसी ही विशेष धातुओं का निर्माण करने के लिए भारत को एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो केवल उत्पादन ना करे बल्कि लगातार नई धातुओं पर अनुसंधान भी करे।
2: क्या तभी मेधानी की स्थापना हुई थी? लगता है यही बताना जा रहे हैं आप मुझे।
3: अब तुम सही दिशा में पहुंच गई हो। हाँ, ये अखबार वाला आया है क्या?
2: हाँ दादू, रुकिए मैं अखबार लेकर आती हूँ।
3: हाँ हाँ।
2: अरे दादू, इसमें तो किसी रॉकेट प्रक्षेपण की तस्वीर छपी है।
3: देखा, हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं बेटा। रॉकेट उड़ गया, मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, नया लड़ाकू विमान बना, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि इन सब के पीछे उन धातुओं का भी योगदान है जिनके बिना ये सब संभव नहीं होता।
2: सच दादू, हम मशीन तो देखते हैं लेकिन उसे बनाने वाली धातु के बारे में शायद ही सोचते हैं।
3: और आज की हमारी यात्रा उसी अनदेखे नायक की कहानी है।
2: दादू लगता है हमारी ये यात्रा किसी पाठशाला से कम नहीं रही।
3: सही सही, बिल्कुल सही कहा बेटा।
2: एक बात तो मुझे अब समझ में आई है कि विशेष मिश्र धातुएं क्यों जरूरी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब आज से 50-60 साल पहले ना तो इतने आधुनिक कंप्यूटर थे, न इतनी मशीनें थीं, तो भारत ने इतनी कठिन धातुएं बनाने की शुरुआत कैसे की होगी?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, और इसी प्रश्न का उत्तर हमें सन 1973 में ले जाता है।
2: 1973? यानी आज से लगभग आधी सदी पहले।
3: स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये निश्चय तो कर लिया था कि हमें रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी।
2: समस्या? कौन सी समस्या दादू?
3: भाई मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो, सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो, सबसे कुशल इंजीनियर हो, लेकिन जिस धातु से मशीन बननी है वही तुम्हारे पास ना हो तो क्या होगा?
2: फिर तो सारी योजना ही रुक जाएगी दादाजी।
3: बिल्कुल, उस समय भारत के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। विशेष धातुएं विदेशों से मंगानी पड़ती थी। वो बहुत महंगी होती थी, हर समय उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी देश अपनी सर्वोत्तम तकनीक आसानी से साझा नहीं करता था।
2: यानी यदि किसी कारण से वे धातुएं मिलना बंद हो जाती तो हमारे कई बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकते थे।
3: ठीक यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के मन में भी थी। उन्होंने सोचा जब रॉकेट, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हमारी होंगी तो उन्हें बनाने वाली धातु भी हमारी ही होनी चाहिए।
2: ये तो है।
3: इसी दूरदृष्टि का परिणाम था वर्ष 1973 में हैदराबाद में स्थापित हुआ मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या हुआ?
2: मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
3: वेरी गुड, जिसे आज पूरा देश मिधानी के नाम से जानता है।
2: यानी मिधानी की स्थापना केवल एक नया कारखाना बनाने के लिए नहीं हुई थी बल्कि भारत को उन धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुई थी जिन्हें भविष्य की तकनीक की रीढ़ माना जाता है।
3: बिल्कुल, शाबाश। और यही कारण है कि मिधानी केवल धातु नहीं बनाती, वो भारत के वैज्ञानिक सपनों को आकार देती है।
2: ओहो दादू, लो अब बिजली चली गई, इन्वर्टर क्यों नहीं चला लेकिन?
3: हाँ बेटा, लगता है इन्वर्टर भी थोड़ी देर आराम करना चाहता है।
2: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, अगर बिजली चली जाए तो हम थोड़ी देर असुविधा में रहते हैं, लेकिन अगर किसी देश को जरूरत के नाम पर विशेष धातुएं ही ना मिले तो?
3: तब केवल असुविधा नहीं होती बिटिया, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अभियान, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण उद्योग भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: अब समझ में आया, इसलिए विशेष धातुओं में आत्मनिर्भर होना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा।
3: और अभी तो तुमने मिधानी की दुनिया का दरवाजा ही खोला है, अभी तुम्हें टाइटेनियम की कहानी सुननी है, सुपर मिश्र धातुओं का विज्ञान समझना है, विशेष इस्पात की ताकत जाननी है।
2: अच्छा दादू, ये टाइटेनियम धातु में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया इसकी इतनी चर्चा करती है?
3: मान लो तुम्हें 3 अलग-अलग काम करने हैं। एक ऐसा पुल बनाना है जिस पर रोज हजारों वाहन चलेंगे,
2: ठीक है।
3: एक ऐसा हवाई जहाज बनाना है जो आसमान में ध्वनि की गति से उड़ सके, और एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। तो क्या तुम इन तीनों में से एक ही प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहोगी?
2: नहीं दादू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों की जरूरतें अलग अलग हैं। देखिए ना, अब पुल को मजबूती चाहिए, हवाई जहाज को हल्कापन चाहिए, और रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए कि वो आग और अत्यधिक तापमान को भी सह सके। सही कहा ना मैंने?
3: बिल्कुल, यही कारण है बेटा कि मिधानी केवल एक धातु नहीं बनाती बल्कि अनेक प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, और ऐसी ही एक धातु है टाइटेनियम।
2: दादाजी, टाइटेनियम का नाम मैंने कई बार सुना है।
3: चलो चलो चलो, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। अगर मैं तुम्हें 2 छड़ें दूं, पहले लोहे की, दूसरी टाइटेनियम की, और दोनों की मजबूती लगभग समान हो, लेकिन टाइटेनियम वाली छड़ वजन में काफी हल्की निकले, तो तुम किसे चुनोगी?
2: जाहिर है दादाजी, टाइटेनियम वाली ही चुनूंगी, क्योंकि उसमें मजबूती भी है और उसका वजन भी कम है।
3: सही कहा बेटा, टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है और वजन अपेक्षाकृत कम होता है, इस पर जंग भी बहुत कम लगती है, ठीक है, और ये अत्यधिक तापमान को भी सह सकता है, इसी कारण इसे अंतरिक्ष, रक्षा और विमानन जगत की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में गिना जाता है।
2: यानी लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि विमान मजबूत भी रहे और भारी भी ना हो।
3: यदि विमान का वजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसे उड़ाने के लिए अधिक ईंधन लगेगा, गति कम होगी और उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी, इसलिए हर अतिरिक्त किलोग्राम बचाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
2: अच्छा, और रॉकेट में?
3: रॉकेट में इसका महत्व और बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ हर ग्राम वजन की कीमत होती है। समझ में आ रहा है? रॉकेट जितना हल्का होगा उतना अधिक भार अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा।
2: वाह दादू, एक धातु का चुनाव भी पूरे मिशन की सफलता पर तय कर सकता है।
3: सिर्फ टाइटेनियम ही नहीं, मिधानी की प्रयोगशाला में ऐसी धातुएं भी बनती हैं जिन्हें सुपर मिश्र धातुएं कहा जाता है।
2: सुपर मिश्र धातु? दादू, क्या ये सचमुच किसी सुपर हीरो जैसी होती है?
3: हाँ हाँ बेटा, इसलिए इन्हें गैस टर्बाइन इंजनों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट इंजनों, अंतरिक्ष यानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे अत्यंत कठिन वातावरण में उपयोग किया जाता है।
2: मिधानी जैसी संस्थाओं में केवल धातु नहीं बनाई जाती बल्कि वर्षों तक उनका परीक्षण भी किया जाता होगा ना?
3: हाँ बेटा, हर नई मिश्र धातु को कई कसौटियों पर परखा जाता है, उसकी मजबूती, गर्मी सहने की क्षमता, दबाव झेलने की क्षमता, जंग से बचाव और लंबे समय तक टिके रहने जैसे अनेक गुणों की जांच की जाती है।
2: दादू, आपने टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातुओं की बात बताई, लेकिन क्या मिधानी केवल यही बनाती है?
3: नहीं नहीं बेटा, मिधानी की एक और बड़ी पहचान है, विशेष इस्पात।
2: दादू, इस्पात तो हम रोज सुनते हैं, फिर विशेष इस्पात में क्या अंतर होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न। जिस प्रकार हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार इस्पात भी एक जैसा नहीं होता। किसी इस्पात को अधिक कठोर बनाया जाता है, किसी को अधिक लचीला, और किसी को ऐसा कि वो वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में कभी खराब ना हो।
2: मतलब जरूरत के अनुसार उसके गुण बदले जाते हैं।
3: बिल्कुल बेटा, रक्षा उपकरणों, पनडुब्बियों, मिसाइल प्रक्षेपण प्रणालियों और अनेक भारी मशीनों के लिए ऐसे विशेष इस्पात की आवश्यकता होती है जिसमें मजबूती और टिकाऊपन दोनों होता है।
2: शायद इसलिए मिधानी को देश की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की एक मजबूत नींव कहा जाता है।
3: बिल्कुल बेटा, और अब समय आ गया है उन लोगों की बात करने का जो इन धातुओं को केवल बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें निरंतर बेहतर भी बनाते रहते हैं।
2: मैं बताती हूँ मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता।
3: हाँ बेटा, बिल्कुल सही। धातुओं की असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है।
2: दादू, अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आखिर मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता करते क्या है? क्या उनका काम केवल धातु बनाना होता है?
3: यही तो सबसे सुंदर बात है बिटिया। धातु स्वयं कभी महान नहीं बनती, उसे महान बनाते हैं वे लोग जो उसके गुणों को समझते हैं। मिधानी के वैज्ञानिक और अभियंता केवल धातु नहीं बनाते बल्कि उसकी प्रत्येक विशेषता को गढ़ते हैं।
2: यानी किसी विशेष धातु के बनने के पीछे भी अनेक लोगों की मेहनत, अनुभव और वैज्ञानिक सोच होती होगी।
3: यही तो किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान की विशेषता होती है। यहाँ हर व्यक्ति एक अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई नई मिश्र धातु की संरचना तैयार करता है तो कोई उसे पिघलाने की प्रक्रिया तय करता है, कोई उसकी गुणवत्ता की जांच करता है और कोई ये सुनिश्चित करता है कि वो धातु रक्षा या अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है या नहीं।
2: यानी एक छोटी सी धातु तैयार करने के पीछे भी पूरी एक टीम काम करती है।
3: हाँ बेटा, कई बार तो किसी नई मिश्र धातु को विकसित करने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग जाता है।
2: दादू, क्या वैज्ञानिक सचमुच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं?
3: हाँ बेटा, जहाँ विशेष धातुओं का निर्माण होता है वहाँ अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष सुरक्षा वस्त्र, सुरक्षा चश्मे, दस्ताने और आधुनिक उपकरणों की सहायता से ये कार्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ साधारण लोहे को नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक को आकार दिया जा रहा होता है।
2: भविष्य की तकनीक, दादू कितना सुंदर विचार है ना।
3: और याद रखो, विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती बेटा, हर नए विचार को प्रयोगों से सिद्ध करना पड़ता है।
2: यानी असफलता भी उनके काम का हिस्सा होती है।
3: एक वैज्ञानिक असफल प्रयोग से निराश नहीं होता बल्कि ये समझता है कि अब उसे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना है।
2: दादू, आपने बताया था कि मिधानी के वैज्ञानिक नई नई मिश्र धातुएं विकसित करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि किसी नई धातु की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है।
3: देखो, किसी भी विशेष धातु का जन्म भट्टी में नहीं बल्कि एक आवश्यकता से होता है।
2: आवश्यकता से?
3: मान लो रक्षा वैज्ञानिकों को ऐसा लड़ाकू विमान बनाना है जो पहले से अधिक तेज उड़ सके, या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ऐसा रॉकेट चाहिए जो अधिक भार लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तब वे सोचते हैं क्या वर्तमान धातुएं इस काम के लिए पर्याप्त हैं?
2: और यदि उत्तर ना हो
3: तो वहीं से मिधानी के वैज्ञानिकों का नया सफर शुरू हो जाता है।
2: नया सफर? तो दादू, सबसे पहले क्या किया जाता है?
3: सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि नई धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कितना मजबूत होना है, कितना हल्का होना है, कितनी गर्मी सहनी है और कितने वर्षों तक बिना खराब हुए काम करना है।
2: यानी पहले लक्ष्य तय होता है फिर धातु बनाई जाती होगी।
3: बिल्कुल बेटा, उसके बाद कंप्यूटर की सहायता से धातु की संरचना पर काम किया जाता है। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि किन किन धातुओं को किस अनुपात में मिलाने से अपेक्षित गुण प्राप्त हो सकते हैं।
2: लेकिन दादू, क्या केवल अनुपात बदल देने से धातु के गुण बदल जाते हैं?
3: कई बार हाँ, जैसे भोजन में मसालों का संतुलन स्वाद बदल देता है, वैसे ही मिश्र धातु में प्रत्येक तत्व की मात्रा उसके गुणों को प्रभावित करती है।
2: और उसके बाद?
3: फिर चुनी हुई धातुओं को विशेष भट्टियों में अत्यधिक तापमान पर गलाया जाता है। कई बार ये प्रक्रिया निर्वात अर्थात वैक्यूम वातावरण में की जाती है ताकि धातु में कोई अशुद्धि ना मिल सके।
2: दादू, यानी हवा भी तो कभी कभी धातु की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है?
3: बिल्कुल, ऑक्सीजन या अन्य गैसें कुछ धातुओं के गुण में बदल जाती हैं। इसलिए विशेष धातुओं के निर्माण में वातावरण तक को नियंत्रित किया जाता है बेटा।
2: फिर धातु तैयार की जाती होगी।
3: नहीं बिटिया, अभी तो ये शुरुआत है। पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी आंतरिक संरचना सही बन पाए।
2: यानी जल्दी ठंडा करने से भी फर्क पड़ सकता है।
3: कई बार ठंडा करने की गति ही धातु की मजबूती तय करती है बेटा, इसलिए हर चरण समय और तापमान के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद बेटा फिर बारी आती है फोर्जिंग प्रेस की। इसमें भारी दबाव देकर धातु को नया आकार दिया जाता है, इससे उसकी आंतरिक संरचना और अधिक मजबूत हो जाती है।
2: मतलब धातु को केवल पिघलाया ही नहीं जाता, उसे गढ़ा भी जाता है।
3: हाँ बेटा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अभियंता धातु को आकार देकर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं।
2: और दादू, फिर उसकी जांच होती होगी।
3: हाँ हाँ बेटा, यहीं से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से उसकी सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसकी कठोरता मापते हैं, उसे खींचकर, मोड़कर और दबाव देकर परखा जाता है। कई नमूनों को अत्यधिक तापमान और कठिन परिस्थितियों में भी जांचा जाता है।
2: दादू, इतनी सारी परीक्षाएं?
3: क्योंकि बेटा रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुमान की कोई जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही धातु पहुँचती है जिसने हर परीक्षा सफलता से पार की हो।
2: सो तो है दादाजी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मिधानी में बनी हर धातु की अपनी एक कहानी होती होगी।
3: हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर विशेष धातु की अपनी एक यात्रा होती है।
2: यात्रा?
3: हाँ बेटा, कल्पना करो, अभी अभी मिधानी की प्रयोगशाला में एक विशेष मिश्र धातु तैयार हुई है। गुणवत्ता की हर परीक्षा में वो सफल रही, अब उसे सावधानी से पैक किया जा रहा है। अब जब देश को जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वो वहीं पहुँच जाएगी।
2: यानी एक ही संस्थान से निकली धातु अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है।
3: इसी तरह अंतरिक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वहाँ ना मरम्मत करने कोई मिस्त्री जा सकता है, ना कोई पुर्जा बदलने की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए धातु पहली बार में ही विश्वसनीय होनी चाहिए।
2: अच्छा दादू, क्या मिधानी की धातुएं समुद्र तक भी पहुंचती हैं?
3: हाँ बेटा, युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के अनेक उपकरणों में भी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। समुद्र का खारा पानी सामान्य धातुओं पर जल्दी असर डाल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिन समुद्री वातावरण में भी लंबे समय तक अपना काम बखूबी कर सकती हैं।
2: दादू, क्या केवल रक्षा क्षेत्र ही इन धातुओं का उपयोग करता है?
3: नहीं नहीं बेटा, विशेष धातुओं की आवश्यकता ऊर्जा क्षेत्र में भी पड़ती है। कुछ धातुएं ऐसे उपकरणों में उपयोग होती हैं जो बहुत अधिक तापमान और दबाव पर लगातार काम करते हैं। यदि वहाँ साधारण धातु लगा दी जाए तो पूरा संयंत्र प्रभावित हो सकता है।
2: यानी धातु का चुनाव केवल मजबूती नहीं सुरक्षा से भी जुड़ा होता है।
3: बिल्कुल बेटा, इसीलिए वैज्ञानिक किसी भी धातु को उपयोग में लेने से पहले उसके प्रत्येक गुण का गहराई से अध्ययन करते हैं।
2: अच्छा दादू, इन विशेष धातुओं का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है?
3: ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, कुछ विशेष धातुओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
2: सच में?
3: हाँ बेटा, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम जोड़ हड्डी का विशेष इम्प्लांट या कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण लगाए जाते हैं, तब भी ऐसी धातुओं की आवश्यकता होती है जो शरीर के अनुकूल हों, मजबूत हों और लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
2: दादू, मिधानी तो देश के सपनों को आकार देती है।
3: हाँ बेटा, उन सपनों में कहीं एक सैनिक का विश्वास होता है तो कहीं एक वैज्ञानिक का वर्षों का परिश्रम, कहीं एक वैमानिक का साहस होता है और कहीं एक मरीज की नई उम्मीद।
2: दादू, मुझे लगता है कि ये कहानी केवल मिधानी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो चुपचाप देश को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं।
3: सही कहा बेटा तुमने, और मैं देश के विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, यदि तुम्हें विज्ञान अच्छा लगता है, यदि तुम्हें नई चीजें सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने में आनंद आता है, तो याद रखना भविष्य का कोई वैज्ञानिक, अभियंता या शोधकर्ता आज किसी विद्यालय की कक्षा में बैठा हो सकता है। हो सकता है अगली पीढ़ी के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान के लिए नई धातुएं खोजने वाला वैज्ञानिक आज हमारी ही तरह जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछ रहा हो।
2: यानी बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से होती है।
3: हाँ बेटा, जिज्ञासा ही विज्ञान की पहली सीढ़ी है और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी शक्ति।
2: रुकिए, आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है।
3: हाँ बेटा हाँ, जरा पानी का गिलास दे देना।
2: हाँ दादू, ये रहा आपका गिलास। दादू, मेरी दोस्त आई है, मैं थोड़ी देर में नीचे से आती हूँ।
3: अच्छा बेटा, ठीक है।
1: श्रोताओं, आज के इस रोचक सफर में हमने जाना कि मिधानी केवल विशेष धातुओं का निर्माण करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक और अभियंता अपने ज्ञान, शोध और अथक परिश्रम से

0: विशेष बात हमने। लेखन था स्वाति गिरी का, मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
1: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
1: ससुराल गेंदा
2: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में।
2: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं लेकर आजाद हिंद। श्रोताओं, आज हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर जी की।
1: अमृत कौर जी का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राजा हरनाम सिंह जी के यहाँ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले घर पे हुई और उसके बाद इंग्लैंड में हुई।
2: विद्यार्थी काल में ही इन्होंने खेलों खेलों में बहुत से रिकॉर्ड कायम किए और आगे चलकर पंजाब में खेलकूद संगठन की स्थापना की।
1: हम राजकुमारी अमृत कौर जी की और बातें करें, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राजकुमारी अमृत कौर जी ने 16 सालों तक गांधी जी के साथ उनकी निजी सहायक के तौर पर काम किया और कई उल्लेखनीय काम किए, जिनमें प्रमुख है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, भारतीय मताधिकार के प्रश्न पर लुधियन कमेटी के सामने गवाही,
1: महिला प्रतिनिधि मंडल में भागीदारी और भारतीय संविधान संशोधन की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पार्लियामेंट के सम्मुख गवाही आदि प्रमुख हैं।
0: 1930 के नमक सत्याग्रह के तहत वो बंबई में गिरफ्तार होकर जेल गईं। 1937 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में काम करने के कारण गिरफ्तार किया गया और 50 रुपए जुर्माना और एक दिन की सजा के बाद छोड़ दिया गया।
1: इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वे जुलूसों का नेतृत्व करने लगी। हम इनके बारे में और भी जानेंगे, मगर इस गीत के बाद।

0: राजकुमारी अमृत कौर जी के जुलूसों पर लाठी चार्ज किया गया। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक उनके जुलूसों पर कुल 15 बार लाठी चार्ज किया गया, मगर इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई, लिहाजा सरकार इनको ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रख सकी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
1: अपनी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही इनकी तबीयत खराब होने लगी और कमजोरी बढ़ने पर उनको वापस शिमला भेज दिया गया। उन्हें 20 महीनों तक नजरबंद रखा गया और जब वो जेल में थी तभी उनके भाई की मृत्यु हो गई, मगर इन्हें अपनी भाभी को एक संवेदना पत्र भी नहीं भेजने दिया गया।
0: मगर ये सभी मुसीबतें उनके हौसलों को नहीं डिगा सकी। वो मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने आजादी के बाद भी महिला शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। वे स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं और इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लागू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन व रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इनका निकट संपर्क रहा और शिशु कल्याण की भारतीय परिषद की भी स्थापना की
1: और समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया। आज हमारे देश की उन्नति में इन जैसे समाज सेवियों की दूरदर्शिता का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा इनको शत शत प्रणाम।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नमस्ते।
0: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया और वो नॉट ओनली वो एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास के एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को #नशामुक्तयुवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई

उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन के अंतर्गत रश्मि रथि का भाग 11।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
3: श्रोताओं, आज का युग तेज है। हम तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुके हैं। एक स्पर्श में संसार हमारी हथेली पर आ जाता है। इसके अपने लाभ हैं, अपनी सुविधाएं हैं, पर कहीं ना कहीं इसकी एक अनकही कीमत भी है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी सुंदर रश्मि रथि का काव्य पाठ चल रहा था, अचानक से मैं ये सब क्या कहने लग गई। दरअसल मित्रों, एक समय था जब घरों में पुस्तकें खुलती थीं, कहानियां सांझ की दीपशिखा के साथ जीवित हो उठती थीं, दादी नानी के स्वर में इतिहास सांस लेता था। उन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार जन्म लेते थे। संस्कृति के प्रति सम्मान और साहित्य के प्रति अनुराग पनपता था।
2: आज वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती दिखाई देती है। इसका प्रभाव बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारी मानसिकता, हमारी संवेदना, हमारे धैर्य सब पर पड़ रहा है। अच्छा साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं होता, वो जीवन जीने की दृष्टि देता है, विचारों को दिशा देता है और चरित्र को गढ़ता है।
3: इसी उद्देश्य से तो हमने अपने श्रोताओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम काव्य गुंजन आरंभ किया है, ताकि हम अपने देश के महान साहित्यकारों और कवियों की रचनाओं से पुनः जुड़ें, उनके संघर्ष, उनके आदर्श और उनके चिंतन को आत्मसात कर सकें। जब हम ऐसी कृतियों को सुनते हैं ना, तो केवल कथा नहीं सुनते, हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। तो आइए श्रोताओं, उसी चेतना के साथ बढ़ते हैं चतुर्थ सर्ग के अंतिम अंशों की ओर।
2: और आज चतुर्थ सर्ग के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हुए हम केवल काव्य पाठ नहीं करेंगे, हम उस धड़कन को सुनेंगे जो इतिहास के सीने में गूंजती है। देवता और मानव आमने सामने हैं, पर ये टकराव शस्त्रों का नहीं, संकल्पों का है। दिनकर जी ने विभिन्न लेखों और साक्षात्कारों में यह स्पष्ट कहा था कि उनका कर्ण के प्रति विशेष आकर्षण था। दिनकर जी कर्ण को केवल पौराणिक पात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय और उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक मानते थे। दिनकर जी स्वयं कर्ण के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे उसे केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि उस मनुष्य का प्रतीक मानते थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पौरुष और आत्मसम्मान के बल पर खड़ा रहता है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को विस्तृत कीजिए, क्योंकि आगे जो घटित होगा वो त्याग का वो स्वर है जिसे समय भी मौन होकर सुनता है। आइए वापस चलते हैं उसी गंगा के तट पर, जहां देवराज इंद्र खड़े हाथ फैलाए कर्ण के समक्ष, और कर्ण मानो स्वयं में तीनों लोक का सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग का भाग 6 का काव्य पाठ और चर्चा।
4: मुझको छोड़ ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता ना प्राण को रख कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा? इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा? अब जाकर कहिए, पुत्र मैं प्रथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है, और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा।
3: यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में।
2: चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, जो कि त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महा तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले,
5: अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगूं क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा, नर जीता सुर हारा।
3: जब कर्ण ने कृपाण उठाई, वह केवल देह भेदन का क्षण नहीं था, वह तपस्वी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। जैसे आदित्य अपने ही अंश का तेज उतारकर जगत को समर्पित कर दे, वैसे ही उसने कवच कुंडल शरीर से विलग कर दिए और पीड़ा समाधि से स्थिर स्वर्ण का आवरण उतरा, किंतु आत्म तेज सहस्र गुना दीप्त हो उठा। उस मार्मिक दृश्य में प्रतीत होता है मानो कवि ने केवल वर्णन नहीं किया, स्वयं कर्ण को ही जी लिया हो। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य तपस्या की चरम परिणति है।
2: उस क्षण देवराज की स्थिति भी विचित्र हो उठी, जैसे मेघ अपने ही गर्जन से चौंक जाए, जैसे वज्रधारी के हाथ से वज्र ही भारी पड़ जाए, वैसे ही इंद्र कर्ण के त्याग के सम्मुख स्तब्ध रह गए। उनका मुखमंडल मानो ग्रहण ग्रस्त चंद्र सा मलिन पड़ गया। देवलोक का अधिपति वहां एक संकोच ग्रस्त मनुष्य सा खड़ा था, जो छल लेकर आए थे वही त्याग की ज्वाला में दग्ध हो उठे। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की ऊंचाई अचानक झुक गई हो और धरती का एक वीर आकाश से भी अधिक विराट हो गया हो।
3: श्रोताओं, आज के समय में जब लोग सफलता के लिए समझौते करने को तैयार हो जाते हैं ना, तो कर्ण का चरित्र हमें यहाँ ये सिखाता है कि चरित्र की ऊंचाई पद या शक्ति से बड़ी होती है। उसके पास जीवन बचाने का अवसर था, किंतु उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और इंद्र का झुकना हमें ये बताता है कि कभी कभी अधिकार और पद भी नैतिकता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। सच्ची विजय वही है जहां मनुष्य अपने मूल्यों पर अडिग रहे, चाहे परिणाम उसके विरुद्ध ही क्यों न हो। इसलिए इस प्रसंग की शिक्षा सरल है, शक्ति जन्म से नहीं चरित्र से बनती है, और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है।
2: मित्रों, सचमुच यह क्षण केवल एक दान का प्रसंग नहीं, मनुष्यता के गौरव का महोत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भी इस दृश्य को निहार कर विस्मित रह गई हो। दिशाओं में जो ध्वनि गूंज रही है उसे प्रशंसा कहें, वंदना कहें या विजय घोष, क्योंकि आज एक मनुष्य अपने त्याग से देवताओं के समकक्ष नहीं उनसे भी ऊंचा दिखाई देता है। कर्ण ने कवच और कुंडल देकर केवल अपना शरीर नहीं हल्का किया, उसने दान की परिभाषा को ही विस्तृत कर दिया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, रश्मिरथी की यात्रा अभी आगे बढ़नी है और कर्ण का संघर्ष भी अभी अधूरा है। उसका युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं उस दिन आरंभ हो गया था जब उसे अपने ही भाग्य से जूझना पड़ा था। अब अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे चतुर्थ सर्ग के अंतिम पड़ाव में, जहां सुनेंगे भाग 7 का काव्य पाठ।
5: हाँ हाँ, पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दीखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिखेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है।
6: इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र ये नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण, कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दूरधर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो।
3: तब कर्ण ने कहा,
7: धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर? बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो।
3: तब देवराज बोले,
6: कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा? और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से? अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।
2: दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, गया कर्ण निज घर को।
3: श्रोताओं, ये प्रसंग केवल इंद्र और कर्ण का संवाद नहीं है, ये मनुष्य और देवत्व के बीच खड़ी उस अदृश्य रेखा का प्रसंग है जहां आकर सारे मानदंड बदल जाते हैं। देवराज इंद्र स्वयं अपराध बोध से भरे खड़े हैं और कर्ण सब कुछ देकर भी निर्भर, निर्विकार और उज्जवल दिखाई देता है। यही तो इस प्रसंग का चमत्कार है। दान देने वाला छोटा नहीं हुआ, लेने वाला बड़ा नहीं हुआ, उल्टे दान ने कर्ण को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर इंद्र स्वयं अपनी ओर देखने में संकोच अनुभव करते हैं। लोक में कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। कर्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, अपमान की अग्नि, उपेक्षा की धूप और संघर्ष की आंधियों ने उसे जलाया अवश्य, परंतु अंततः वही अग्नि उसके व्यक्तित्व को कुंदन बना गई।
2: मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहां एक अत्यंत गूढ़ बात कह रहे हैं। वे ये नहीं दिखा रहे कि कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए, वे ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि वो क्या छोड़ सकता है इसमें निहित है। संग्रह सहज है, त्याग कठिन, मुट्ठी बांधना सरल है, हाथ खोलना कठिन। और जब कोई मनुष्य अपने प्राणों की सुरक्षा तक दान कर दे, तब वो केवल दानी नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है। कर्ण का तेज इसी त्याग से जन्मा है। इसीलिए इंद्र कहते हैं, जहां तुम पहुंच गए हो वहां देवत्व भी नहीं पहुंच सकता। कितना विलक्षण कथन है। दिनकर जी मानो कह रहे हो कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ पर विजय पा लेता है, तब वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है।
3: और यहाँ इस प्रसंग की एक और बात अत्यंत स्पष्ट करती है। जब इंद्र वर मांगने को कहते हैं, तब कर्ण धन, राज्य, विजय या आयु नहीं मांगता। वह केवल ये प्रार्थना करता है कि धर्म में उसका भाव अचल रहे। कितना विशाल चिंतन है ये। सामान्य मनुष्य संकट के समय सुरक्षा चाहता है, कर्ण धर्म चाहता है। वह कवच नहीं मांगता, वह आस्था मांगता है। वह रक्षा नहीं मांगता, वह निष्ठा मांगता है। मानो कह रहा हो कि यदि धर्म साथ है तो कवच की आवश्यकता नहीं, और यदि धर्म साथ नहीं है तो कवच भी व्यर्थ है। यही भारतीय चिंतन की आत्मा है, जहां बाहरी शक्ति से अधिक महत्व भीतरी स्थिरता को दिया गया है।
2: आज के समय में जब मनुष्य का मूल्य प्रायः उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव से आंका जाने लगा है, तब कर्ण का ये प्रसंग हमें भीतर झांकने को विवश करता है। हम क्या बचा रहे हैं और किसके लिए बचा रहे हैं? जीवन भर हम जोड़ते रहते हैं धन, वस्तुएं, संबंध, पहचान, परंतु में मनुष्य को बड़ा उसका संग्रह नहीं बनाता, उसका समर्पण बनाता है। नदी इसलिए पूजनीय नहीं कि वो जल रोक कर रखती है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। कर्ण भी उसी नदी की तरह है, देता जाता है, देता जाता है, और जितना देता है उतना ही विराट होता जाता है। और शायद यही कारण है कि दिनकर जी ने कर्ण को अपना नायक बनाया। महाभारत में विजेता और भी हैं, राज सिंहासन पाने वाले और भी हैं, पर कर्ण जैसा चरित्र दुर्लभ है। वो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से बनती है। जन्म उसके हाथ में नहीं था, अपमान उसके हाथ में नहीं था, समाज का व्यवहार उसके हाथ में नहीं था, पर उसका आचरण उसके हाथ में था, और उसने वही चुना जिससे उसका व्यक्तित्व अमर हो गया। यही रश्मि रथी का मर्म है और यही दिनकर जी का संदेश है।
3: श्रोताओं, इस प्रसंग का सबसे मार्मिक पक्ष शायद यही है कि यहाँ दान समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा आरंभ करता है। कवच कुंडल शरीर से अलग हुए हैं, किंतु कर्ण का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा है। देवराज अमोघ शक्ति देकर लौट गए, किंतु संवाद के बाद हमारे मन में जो प्रश्न, जो भाव, जो प्रेरणा शेष रह जाती है, वही इस काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि महान साहित्य वही होता है जो कथा समाप्त होने के बाद भी भीतर कुछ बोलता रहे। और उसी भावपूर्ण क्षण के साथ चतुर्थ सर्ग का यह अध्याय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। दान की यह ज्योति, धर्म की यह दृढ़ता और चरित्र की ये ऊंचाई आने वाले प्रसंगों में भी हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। सच ही तो कहा गया है, समय साम्राज्यों को भुला देता है किंतु त्याग की कथाओं को नहीं। कर्ण का कवच न रहा, कुंडल न रहे, परंतु उसकी कीर्ति का कवच आज भी अक्षत है। यही उसकी विजय है, यही उसकी अमरता है। श्रोताओं, कभी कभी सिर्फ मौन रहने का ही मन होता है। ऐसे काव्यांश को सुनकर लगता है कि उसी चिंतन में रहें। सुनने वाले भी जैसे सब कुछ हार जाते हैं। हृदय में मानो इतिहास के वो पन्ने अंकित हो जाते हैं। उन्हीं पन्नों पर मनोरथ दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ रहा है रश्मि रथी का रथ। और देखिए कैसी अद्भुत दृष्टि रही कवि की, जिसने इस क्षण को केवल युद्ध कथा नहीं रहने दिया, बल्कि मानव गरिमा का घोष बना दिया। हाँ, यह शब्दों का नहीं, आत्मा का चित्रण है। जिस तरह कर्ण का तेज सबके सामने आता है, लगता है कवि ने उसे देखा ही नहीं, जिया है। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की महिमा है।
2: मित्रों, आज हमने उस अद्भुत प्रसंग को सुना जहां देव राजेंद्र स्वयं याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आए और उनसे जन्मजात कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण सब कुछ जानते थे, वे ये भी जानते थे कि ये दान उनके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा छीन लेगा। फिर भी उन्होंने अपने वचन, अपने धर्म और अपनी दानशीलता को जीवन से अधिक महत्व दिया। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत के महान योद्धा नहीं रहते, बल्कि त्याग, स्वाभिमान और आदर्श के शिखर पुरुष बन जाते। तो मित्रों, आज की सीख सरल है। सम्मान पद से नहीं, आचरण से मिलता है, और विजय परिणाम में नहीं, निर्णय में छिपी होती है। अब आगे का सर्ग और भी कठोर प्रश्न लेकर आएगा। रण समीप है और आदर्श की अग्नि परीक्षा अभिशेष है। तो अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर आपसे होगी भेंट, जहां आरंभ होगा रश्मि रथी का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी पंचम सर्ग। वहां एक मां का पश्चाताप है, एक पुत्र का स्वाभिमान है और नियति के सबसे करुण अध्यायों में से एक हमारा इंतजार कर रहा है। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
3: मैंने यानी आपकी रेडियो सखी भगवती सक्सेना ने,
5: मैं प्रवीण महुआले,
7: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
2: तो दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।